FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि तदनुसार 27 अगस्त 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विल्विन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आई सुनते हैं वंदना।

चिंतन। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 293। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 11। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00 और त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा नए गीतों का सुबह 8:30 पर। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक मुकेश पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30। इसी कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम होगा दिन में 11:00 और 12:00। सुनिए हिंदी में समाचार 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर। ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दिन में 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दोपहर 3:00 होगा सखी सहेली कार्यक्रम। हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 4:00। संवादक ममता सिंह और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00। 5:30 पर से लेकर शाम 6:30 तक सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम और इस बीच शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर सुनिए आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और संध्या रंजन। इस कार्यक्रम का समय होगा 6:35। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00 और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। गजल गायिका ऋतु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2 आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। हवा महल कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:00। इसमें आज आप सुनेंगे नाटिका झूठी शान, लेखन सलीमा खुर्शीद, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 और 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जैसा कि आपको पहले बताया। 10:00 सुनिए छाया गीत कार्यक्रम। आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 293।

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया, किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास इस कड़ी में स्वागत करता हूँ। इस ताल प्रवाह में बहुत सारे तालों के साथ साक्षात्कार हमारा हुआ है। मिश्रा जी, आपके गुरुजी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का एक बहुत प्रिय ताल रहा है, ताल धमार।
2: धमार धमार, वो बहुत बढ़िया उनका ताल के प्रति धमार रहा। और सितारा देवी के जो भाई चौबे महाराज जी थे
1: जी,
2: वो धमार में छूट नाचते थे। छूट नाच
1: वो क्या चीज है?
2: कोई बंदिश नहीं।
1: अच्छा,
2: एक होता है बंदिश, एक होता है छूट की कहीं से उठेंगे और सम पे आएंगे। ये घंटों की बात है। तो
1: बात?
2: आपने बड़ा सही सवाल किया मेरे गुरुजी का, किशन महाराज जी का।
1: तो क्या हमारे श्रोताओं को आप ताल धमार सुनाएंगे?
2: जरूर जरूर। मैं ताल धमार 14 मात्रे का ताल है ये। ताल प्रवाह में ये खास बात हमने रखा कि ताल हो गया तबले का, प्रवाह एक संगीत की जर्नी है हमारी। इसमें धमार ताल का क्या अंदाज है? पहले तो गुरु
1: जी, हाँ जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा था, चूंकि अधिकतर तालों का शुरुआत या तो धा या धिन से होता
2: जी,
1: है
2: जी।
1: इस ताल का शुरुआत कत से है।
2: हाँ,
1: या क से है। कहीं मैंने पढ़ा था कि धा को मार दिया, इसलिए इसका नाम बंगाली लोग धमार कहते हैं। ऐसी भी कुछ बात
2: नहीं,
1: है क्या?
2: धमार का मतलब ये एक अलग है कि वो बड़ा तही सही तरीके से वो मारता है। वो क धीच धीच धा ग दीन दीन ता क दी, वो जो आता है संपर्ण, इसीलिए उसका नाम है कि दे मार दे मार दे मार, करते करते धमार हो गया।
1: क्या कहने,
2: तो इसका जो चलन है सम पर आता है, क पे आता है। और इसी ताल का एक और अंदाज है आड़ा चौताल।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, वो भी 14 मात्रे का है। उसका ठेका इस प्रकार है, धिन तिरिकट धीना तूना कत्ता तिरिकट धीना धी धीना धी धीना धिन तिरिकट धीना, ये आड़ा चौताल है।
1: आपने 14 का जिक्र किया, ताल झुमरा भी तो 14 पर है।
2: वो भी झुमरा है, लेकिन उसमें कभी सोलो नहीं बजा सकते हम, क्योंकि वो गायकी अंग का है, ताल है वो, है ना फारूक भाई, वो गायकी का अंदाज है एक। लेकिन ये जो है धमार, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ धमार। लेकिन मुझे कुछ एक अचानक कुछ दिमाग में आया कि एक आग बहुत सारे पिक्चर ऐसे हुआ करते दास बाबू की, जिसमें बहुत से हीरो
1: जी
2: खुद बोल को बोले हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, तो प्रस्तुत है पहले श्रोताओं धमार ताल। उसके चरण है क धी ट धी ट धा ग दीन दीन तकत तकत तकत तकत का धीट।
1: और एक बात, धमार तो अधिकतर पखावज में ही बजाया जाता है,
2: है ना मेरे पास?
1: तो यानी आप बड़ा मुख के तबले पे पखावज बजा रहे हैं।
2: हाँ जी,
1: क्या बात,
2: बड़ा मुख का तबला और एक अंदाज उसका खुला बाज।
1: जी हाँ,
2: उसको बंद नहीं कर सकते, फिर नारी और पुरुष में अंतर क्या रह जाएगा?
1: जी हाँ,
2: नारी भी नारी की तरह चल रही, पुरुष भी पुरुष के, उसका नाम ही है कि पुरुष का अंग है वो धमार। हाँ जी भैया,

अब ये जो मैं क्षमा चाहता हूँ, खास मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ताल को बजाने के लिए कम से कम एक डेढ़ दो घंटा मिले तो मजा आए, क्योंकि बादल का अंग है ये और इस समय बरसात का मौसम आने वाला है, तो देखिए कैसे उसका उमंग कैसे होता है।

0: अब ये कोई बंदिश नहीं है, इसको कहते हैं छूट।
1: अच्छा
0: हाँ जी, ये कोई बंदिश नहीं है। ये बंदिश हो गया, ये छूट हो गया, ये छूट।

0: तो ये एक धम्मार का अंदाज है। अब ये कम से कम अगर मुझे ताल प्रवाह में फिर से बुलाएं तो इसका एक और अंदाज बताएं कि कितना ये धम्मार ऐसा ताल है कि खास पुरुष अंग हाथी कैसे चलती है, एक हाथी और एक उसी का अंदाज।
1: मिश्रा जी, हमने ये सुना है कि ब्रज में जब होली खेला जाता है तो उस समय भी लोग धमार गाते हैं।
0: वो अलग हो गया चीज,
1: पक्की होली।
0: हाँ, वो धमार तो गाते हैं लेकिन धमार बजाते नहीं हैं।
1: जी जी,
0: वो इसी के अभी मैंने पिछले एपिसोड में मैंने दिखा कि चाचर या दीपचंदी या रूपक।
1: जी जी,
0: कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका अंदाज वो अलग है, लेकिन धमार जो अगर सोलो बजाते हैं या नाचते हैं तो वो इसी अंग से होगा।
1: क्या बात।
0: लेकिन उसके लिए आपको अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, माता पिता और गुरु अच्छा सिखाते हैं लेकिन उस पर आपका भाग्य और आपका रियाज, आपका साधक, आपका साधना, ये सारा मिल के तब कहीं पंचतत्व में मिलता है। वो जैसे बोलते हैं कि अगर इसको खोली तो पंजा होता है, बंद करी तो मुट्ठी हो जाता है, तो इसमें ताकत होना चाहिए, इसकी एक अलग खुशबू है। तो मुझे धमार करते करते मैंने पहले ही कहा था आपसे कि एक बड़ा खूबसूरत
1: गीत
0: उसमें अशोक कुमार जी ने पठन किया है
1: जी,
0: वो बड़ा सुंदर, मुझे अचानक पता नहीं क्यों याद आया, उस फिल्म का नाम है खूबसूरत।
1: क्या कहने।
0: तो अशोक कुमार जी ने एक बड़ा खूबसूरत पठन किया है, उसे कहते हैं कवित्त परन।
1: और खूबसूरत फिल्म में,
0: खूबसूरत फिल्म में, क्योंकि पुराने जमाने के जितने हीरो हीरोइन थे ना, उनको क्लासिकल सीखना पड़ता था। तो एक खूबसूरत पिक्चर में अशोक कुमार जी का पठन था, नहीं रहता था नंदा नंदा छोम छा ना ना धा।

0: nirata nanda nanda chom cha nanana ta chom ta chom ta digda digdig thai liye rang sab sakha sang man me umang gat tribhang dha khelat bhuj melat lapak jhapak radha lalita chandravali diyo bor rang bor sar bor banavari main hari ja ja re main hari ja ja re मैं हारी जा जा रे।
1: वाह,
0: तीन ताल में है ये दास बाबू। तो देखिए पढ़ंत कैसा है कि वो कितना पढ़े होंगे, उसके लिए कितनी उन्होंने रियाज किया होगा।
1: बाकायदा बाकायदा, इसीलिए तो पुराने जमाने के जितने सारे फिल्म सॉन्ग्स हैं अभी भी मुझे
0: जी हाँ
1: हम सभी को अच्छे लगते हैं।

दृष्टता इगत नंदन बन छुम छननन तछुम तछुम तत्तिगतिस्कृधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले कुछ वर्षों में हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बना ली है। आज के आधुनिक जीवन शैली में प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। थैलियां, बोतल, डिब्बे, पैकेजिंग और अनेक घरेलू वस्तुओं में इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक सस्ता, हल्का और आसानी से उपलब्ध होने के कारण बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसका अत्यधिक और गलत उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। इसी समस्या को प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है।

श्रोताओं, प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आसानी से प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल और सैकड़ों सालों तक नुकसान, इसलिए इसे कहते हैं नेवर एंडिंग पॉल्यूशन। एक प्लास्टिक की बोतल को खत्म होने में लगभग 450 साल से ज्यादा लगते हैं। लोग प्लास्टिक

की थैलियों, बोतलों और अन्य वस्तुओं उपयोग करने के बाद सड़कों, नालियों, नदियों और खुले स्थानों पर फेंक देते हैं। इससे भूमि और जल प्रदूषित होते हैं। प्लास्टिक के कारण नालियां बंद हो जाती हैं और जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। प्लास्टिक जमीन में पानी जाने से रोक देता है, खेत बंजर हो जाते हैं। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक जो है समुद्र में जाता है। इससे मछली, कछुए मर रहे हैं। नदियों और समुद्रों में पहुंचने वाला प्लास्टिक जलीय जीवों के लिए भी खतरा बना हुआ है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, गाय बकरी पॉलिथीन खाकर मर रही हैं। माइक्रोप्लास्टिक पानी नमक खाने में आ गया है। कैंसर और हार्मोन की बीमारियां बढ़ रही हैं। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैस निकलती है। प्लास्टिक को खुले में जलाना उचित नहीं है। इससे धुआं और हानिकारक प्रदूषण वातावरण में फैल सकता है, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्लास्टिक कचरे के कारण शहरों और गांवों की स्वच्छता भी प्रभावित हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग कम करना होगा। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला इस्तेमाल करना होगा। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक वस्तु

से बचना होगा। प्लास्टिक कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय अलग अलग एकत्रित कर उचित तरीके से उसका पुनर्चक्रण कराया जाना चाहिए। हमें प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन में अपनी आदतों में 5 R का मंत्र अपनाना होगा, इसे अपने आचरण में लाना होगा। ये कौन से हैं 5 R? पहले सुनते हैं गीत, फिर आपको बतलाते हैं।

गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से 5 R हैं जिन्हें अपनाना चाहिए और अपनी आदतों में शुमार करना चाहिए। तो पहला है रिफ्यूज, मना करो, से नो टू प्लास्टिक। भैया पॉलिथीन नहीं चाहिए, यह बोलना सीखना होगा। कपड़े का थैला अपने घर से ले जाना हमें अपनी आदतों में शामिल करना होगा। प्लास्टिक स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट को मना करो। आजकल बाजार में स्टील की स्ट्रा जो है उपलब्ध है, जिन्हें हम धोकर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आर है रिड्यूस, यानी कम करें। पानी की बोतलों का इस्तेमाल जो है, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल की जगह हमें स्टील की अपनी घर की बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। दुकानदार से कहें सामान बिना पैकिंग के, या आप कहते हैं ना डबल पैक कर दें, तो उसे हमें रिड्यूस करना होगा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से 5 R हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए। तो हमने पहले आपको बताया रिफ्यूज एंड रिड्यूस। तीसरा R है रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के डिब्बों को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें। पुरानी प्लास्टिक बोतलों से आप गमले बना सकते हैं, यानी वेस्ट से आप जो उसका रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल करें, कचरे को अलग अलग रखें, गीला, सूखा और प्लास्टिक। पांचवा आ रहा है रिप्लेस, यानी बदलें। प्लास्टिक की जगह हमें जो है थैलियों की जगह अपने कपड़े का थैला या जूट का थैला इस्तेमाल करना है। बोतल जो है प्लास्टिक की जगह स्टील या तांबे या मिट्टी की इस्तेमाल करनी है। जो प्लास्टिक के स्ट्रो आते हैं उनकी जगह हमें कागज या बांस या स्टील की स्ट्रो इस्तेमाल करनी है। पत्तल दोनों की तरफ हमें लौटना होगा। आजकल मक्का और गन्ने से बनने वाले जो है पत्तल दोनों प्लास्टिक के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं, जो लगभग 60 दिन में गल जाते हैं। शादी फंक्शन में स्टील के बर्तन या पत्तल का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि यह कोई नई चीज नहीं है, पहले शादी के फंक्शन में पत्तल पर ही खाना सर्व किया जाता था। हम स्टील के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किए कई बार हो सकता है। आजकल कुछ सामाजिक संस्थाएं, मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादियों ने अपना पूरा स्टील के बर्तनों का सेट बनाया हुआ है, स्टॉक पूरा है, जो विभिन्न विवाहों पर, आपके पारिवारिक फंक्शन पर आपको नाम मात्र किराए पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक बहुत ज्यादा अमल और प्रचलन में आ गया है, इसलिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटना होगा।

0: आज इधर सुन दुनिया की खबर।
1: याद रखो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल 5 मिनट के लिए करते हैं और प्रदूषण 5 साल के लिए भुगतते हैं, 500 साल के लिए। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक और लापरवाही पूर्व उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यदि हम आज से ही प्लास्टिक का कम उपयोग करें, उसका सही निपटान करें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाएं, तो हम अपनी धरती को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। प्लास्टिक कम करें, प्रकृति को सुरक्षित रखें। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार अलवर।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार अलवर FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आई सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर और काजोल की आवाज में फना फिल्म से। गीत की रचना है प्रसून जोशी की और संगीत जतिन ललित का।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत में अब आपको गीत सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज में फरेब फिल्म का। गीत की रचना सईद कादरी की है और संगीत अनु मलिक का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अब आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम, अलीशा चिनॉय और जॉय की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत। गीत की रचना इरशाद कामिल की, संगीत प्रीतम का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान को एक विलेन फिल्म में, गीत और संगीत था मिथुन का। अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद राज आनंद और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में वाह वाह रामजी फिल्म का गीत। गीत की रचना देव कोहली की है और संगीत आनंद राज आनंद का।

अन्विता दत्त के लिखे गीत को अपनी आवाज दी के और पलक मुछाल ने। गाने की धुन तैयार की सोहेल सेन ने। फिल्म का नाम एक था टाइगर का भी आप ये गीत सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 008618514905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा

0: हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
6: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए

0: अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आई सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई हुई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से।

0: कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
1: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
1: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
1: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी, आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
1: अजीत जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रही हैं आप?
1: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर की वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
1: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
1: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक
1: जी।
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
0: जी। जी, तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनके रोज की जिंदगी का हिस्सा है
1: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
1: जी,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
0: जी।
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर

0: जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इंद्रेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। मिमरेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते
0: जी।
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।

0: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
1: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं। कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
0: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मियां मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
2: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
3: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
4: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
5: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
2: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
6: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक

0: Ernie Hay. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर

0: जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से

0: आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
7: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राज्य के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हुई और प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के प्रति विशेष आकर्षण। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक जबकि बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम मतदाता हैं। इस बीच बीकानेर और फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव के मतदान कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में अब पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। वहीं जिले की अन्य 6 नगरीय निकायों के कुल 190 वार्डों में दूसरे चरण के तहत 11

0: नंबर को ही मतदान होगा। उधर सीकर जिले की फतेहपुर नगर पालिका में दूसरे चरण के लिए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को कराया जाएगा। आयोग ने ये बदलाव स्थानीय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों और परिस्थितियों को देखते हुए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के तहत मेरा युवा भारत माय भारत की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में हर जिले के 2 कॉलेजों में होगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। कार्यक्रम में युवाओं को खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय खेल हस्तियां भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू की है। रेल और सड़क परिवहन के जरिए प्याज प्रमुख खपत केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने 2026-27 के लिए 2,00,000 टन रबी प्याज खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसमें से करीब 1,21,000 टन प्याज खरीदा जा चुका है। इस बीच नासिक से दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए बफर स्टॉक का प्याज भेजा गया है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एनसीसीएफ, नेफेड, केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के जरिए इसकी खुदरा बिक्री की जाएगी। नेपाल में बाढ़ आपदा के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नेपाल पर गए राज्य के किसी भी व्यक्ति के संबंध में जानकारी या सहायता के लिए परिजन आपदा प्रबंधन विभाग के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के टोल फ्री नंबर 1070 पर और 112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दूरभाष नंबर भी जारी किए गए हैं। विभाग ने आईपी नंबर 2888 और ईमेल के माध्यम से भी ये सूचना देने की सुविधा उपलब्ध कराई है। गौरतलब है कि नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मृत्यु हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल बाढ़ हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है, साथ ही हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हो रही है। इनमें 12, दौसा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले शामिल हैं। कृषि विभाग के अनुसार इन जिलों में डीबीटी पीओएस एप्लीकेशन का नया संस्करण लागू किया जा रहा है। इससे पहले 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि अब तक 1,00,000 से अधिक किसानों ने करीब 15,000 मीट्रिक टन यूरिया की ऑनलाइन बुकिंग की है। नई व्यवस्था में फार्मर आईडी के माध्यम से उर्वरक की बिक्री होगी और हर बिक्री डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास का रोडमैप तैयार कर कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। विजयपुर के सांगानेर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 25,00,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
1: कि लगातार हमारे देश के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी माता बहनों का उपचार कैसे हो, आर्थिक रूप से संबल कैसे बने। अगर ये काम किया तो आज राजस्थान के अंदर 25 लाख से अधिक मेरी लखपति दीदी ट्रेनिंग ले चुकी और 20 लाख मैंने लखपति बन चुकी। वो कहती है मेरा जीवन ऐसा था मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मैं साल में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख कमा रही हूँ। कहीं तो मेरी बहने मैनेजर दीदी बन गई। ये भी मैं आपसे कहना था, तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
1: भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व कल मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजारों में राखियों की खरीदारी तेज हो गई है। 12 जिले में रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं। वहीं सवाई माधोपुर में बाजारों में राखी, नारियल, मिठाई, कपड़े और उपहारों की खरीदारी हो रही है। इधर राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ रोड, चांदपुल बाजार और छोटी चौपड़ सहित प्रमुख बाजारों में राखियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। इस बार पारंपरिक कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के साथ ब्रेसलेट स्टाइल की राखियां भी पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं दुकानदार भी राखियों की अच्छी बिक्री से खुश है।
2: डिमांड अच्छी है, इस बार ग्राहक हर तरह की राखियां ही ले रहा है। बिल्कुल हर तरह की राखी ग्राहक पसंद कर रहा है। ब्रेसलेट वाली राखी इस बार अच्छी चल रही है। प्राइस सर अपने पास हर रेंज है, 10 रुपए से लेके आपको 250-300 तक की सारी रेंज मिलेगी।
3: आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि राखी आ रही है। हमारे साल का एक त्योहार होता है तो मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ। अच्छी अच्छी राखियाँ खरीदी है मैंने अपने भाई के लिए, और मिठाइयाँ वगैरह खरीदेंगे हम, और कपड़े वगैरह खरीदेंगे, और राखी को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने भाई के साथ।
4: बहुत अच्छी है। अब क्या, मेरी बेटी की शादी हुई है तो पहली राखी है, थोड़ा क्रेज है तो मेरे घर पे मैंने सबको खाने भी बुलाया है और हम सब भी मेरे पियर जाएंगे खाना खाने।
1: इस बीच रक्षाबंधन पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी मुस्तैद है। जांच दलों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राज्य के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हुई। और प्रदेश में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक, कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के प्रति विशेष आकर्षण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: खिलाड़ी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है बोल बच्चन। स्वानंद किरकिरे ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अय्या इस फिल्म का गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

शाल्मली खोलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाजों में अभी आपने सुना अय्या फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुकेश को, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसके अलावा आज दोपहर 4 होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आप सुनेंगे, संवादक होंगी ममता सिंह। तो इन कार्यक्रमों को जरूर सुनिएगा, भूलिएगा नहीं इनका समय। इसी के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदन लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदन लाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदन लाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये

वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: याद है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

0: रहा।
1: सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978, मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है।

और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: एफएमएंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं चंद संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
9: का दौर हो, उस सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था, और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे।
10: जी जी।
9: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था, वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके

0: जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
0: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
0: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
0: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
0: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो, या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था, उन दिनों बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल, वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
0: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल।
0: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरी बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहाँ पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था। ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहाँ पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहाँ पे पोइट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुँचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
0: फिर नेपाल है। फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहाँ से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था। जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, इस बारे में कुछ बताएं।
0: तो उस समय बात है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, मैं हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे। तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही है, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था। क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था, मेरा नाम लेते थे, तो मैं खड़ा नहीं होता था इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो

0: मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चर कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे, तो कुछ लोग मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं कलकत्ता नहीं मेरे बॉम्बे
1: ले जाना चाहता।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला। वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है। बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलोसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें।
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है, और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सब?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
2: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
2: हाँ, मेरा शहर
1: जी,
2: जी, मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
2: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया, कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
2: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
2: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें,
2: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को

0: देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा है ना
1: जी,
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको। तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो,
1: बिल्कुल,
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है बल्कि हाथ देना है, उठाना है। अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो। तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है। तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: मैं सबसे अलग।
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और SD बर्मन ने कमाल का जो है सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की, 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ।
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी, जी।
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी, जी।
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही

0: साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें जी, तो जी. वो यूज कर सकते हैं. तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान चल रहे हैं, क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है. होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी.
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं. जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है. जब उससे हटके बात होती है जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं. और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं. वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है. तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं. वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं. ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
0: जी.
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है. तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे. तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
0: जी.
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है. तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं. वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने. तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं. फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है. तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए. हाँ. वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट. तो वहां पे चकाचौंध दिखता है. अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
0: अपनी अपनी जगह,
1: अपनी अपनी जगह है. आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं. जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं. लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है. तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना. तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं. तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपके सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है. तो आपके अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पर हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है
0: जी. जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं.
1: जी, जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके.
0: अच्छा,
1: वो भी म्यूजिकल ही है.
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: अच्छा.
1: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं. बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें
0: जी.
1: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर.
0: अच्छा,
1: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारित्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं. तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है. और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल. जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था.

0: जी
1: कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी।
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ देखते हैं, तो शरीर का बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह कम हो जाता है, तो उसके

0: अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना, तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ये है, और रेडियो में पूरा ही वाचन, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए, मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकल कर मैं इस दौर में जा रहा था, जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था, तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन फुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होशवास उड़ गए। मुझे अगर कभी सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम, शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलकाई साहब से, तो उस समय मुंबई आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मैंने नाटकों के बारे में, और मैंने जो नाटक किया था विरासत करके एक नाटक है, वराचरी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पर वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बात भूल गया मैं, दो तीन साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा।
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
0: अच्छा।
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
0: जी।
1: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया, उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है, नॉवेला 1084 की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, तीन तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था, ऐसे तीन तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ। उस दौर में

0: महाश्वेता देवी ने लिखा था, उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी माँ जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है, वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी माँ निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ,
1: उसकी माँ।
0: तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का, तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते हैं
1: कैसे जिया आपने उसे, उस माहौल को
0: बताइए, एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरी को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया भादुड़ी जी और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी, तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
1: सुनते हैं गाना जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है,
1: ऐसा लगा
0: मुझे। दिल से चाहो तो, और भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका।
1: जी जी जी।
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे।
1: जी, जी।
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा।
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, औधा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा। उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा।
0: अच्छा।
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी।
1: मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: मैं कलाकार आर्टिस्ट,
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था।
0: अच्छा।
1: आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का, टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर
0: मूवीज आ रही थी। हाँ, बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे,
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय
0: ना के बराबर था, बिल्कुल।
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी
0: रोमांटिक
1: उसमें जाएंगे
0: जी,
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री की कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
0: जी।
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा, हाँ। या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी

0: किया
1: इस तरह के रोल में
0: बिलोंग जी, जी जी जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया।

0: और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
1: इस तरह के रोल में।
0: जी जी जी जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे। आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया चौरसी की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
1: जी।
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्म में कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, तो मैं गया। क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की जगह है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था।
0: बिल्कुल नहीं, ओटीटी में एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
1: जी,
0: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो 3 बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इंपैक्ट करता है और चला जाता है
1: जी।
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने सुष्मिता सिंह के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल, यहां सुनते आपकी पसंद का एक और गाना
0: जी। मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं, बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ
1: जी.
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा
1: जी.
0: क्योंकि वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है
1: जी.
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए पसंद किए गए हैं
1: जी, जी, जी.
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी.
1: मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था. मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए दूरदर्शन उसको हिंदी में डब करता था. पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग. हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था तो बड़ा मजा आता था. मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ. फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया. बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए पता नहीं साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा. कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की. और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया. जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया. और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट. क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी,
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है.
0: अच्छा.
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर. क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था. वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो. कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था. तो वो लाने की बात थी. तो उन्होंने मुझे चुना तो फिर मैंने कहा करते हैं. फिर 11 साल तक वो करता रहा. मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा. फिर
0: बिल्कुल जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं
1: जी जी
0: बिल्कुल. तो अभी थिएटर

0: थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री, अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे हैं बहुत.
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो भी अभी करने का मौका मिल गया है. वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं. वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाते
0: हैं. हाँ,
1: ठीक है, तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं मैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे, और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं, और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे.
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का.
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.

0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं चंद संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: I Love Falguni. इस एल्बम का गीत आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में. महबूब की रचना थी, ललित का संगीत.
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है.
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती.
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने. उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया.
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है.
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे.
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है.
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं कैलाश खैर की आवाज में उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीत बद्ध किया ये गीत. संगीत निर्देशन में साथ दिया है परेश और नरेश ने. लीजिए सुनिए ये गीत.
3: गीत की लत मोहे ऐसी लागी.

आइए अब आपको सुनवाते हैं लकी अली का गाया गीत, जिसका संगीत बनाया है लकी अली ने। असलम ने इसे लिखा है और एल्बम का नाम है सुनो।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: जय वालिया का गाया और लिखा गीत सुनिए ललित का संगीत है, एल्बम का नाम आंखों में तेरा ही चेहरा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: चमके बिजुरिया। इस एल्बम का गीत सुनिए सुनीता राव की आवाज में। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा है, सुनीता राव का संगीत।
1: केसरिया है रूप मारो, चमचमावेरे पैया में है घुंघरू न्यारो, चमचमावेरे आखिन में तो प्रे...

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। एल्बम का नाम है मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। गीत संगीत ललित सेन का।

मिलिंद इंगले का संगीतबद्ध किया ये गीत आपको सुनवाएंगे, आवाज भी मिलिंद इंगले की। एल्बम का नाम है ये है प्रेम और शब्द रचना श्याम अनुरागी की।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब के सावन इस एल्बम से सुनिए गीत शुभा मुद्गल की आवाज में। प्रसून जोशी ने इसे लिखा है, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: ये है विविध भारत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली

0: रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: साथियों, हिंदी सिनेमा को सादगी, संवेदनशीलता और रिश्तों की खूबसूरत कहानियां देने वाले फिल्मकार थे ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशक, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने ऐसी फिल्में रची जो आज भी दिल के बेहद करीब हैं। उनकी फिल्मों के गीत भी उतने ही मधुर और यादगार रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ सदाबहार नगमे। गोलमाल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। दोपहर के ठीक 12:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आशीर्वाद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है गुलजार ने, वसंत देसाई का संगीत।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

खूबसूरत। इस फिल्म का गीत अब आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में। गुलजार की शब्द रचना है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। साथियों, आज हम आपको सुनवा रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की कुछ गीत। उनकी फिल्मों की तरह उनके गीत भी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा युवा भारत माय भारत की ओर से आयोजित खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संवाद विकसित भारत के निर्माण में खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर प्रदेश के हर जिले के 2 कॉलेजों में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति के स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने से राष्ट्र निर्माण की राह खुलती है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत की दिशा में धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से काम करने का आह्वान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से संवाद भी किया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 309 नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी, जबकि नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में राखी, उपहारों और मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस बार पारंपरिक कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के साथ ब्रेसलेट स्टाइल की राखियां भी काफी पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं दुकानदार भी राखियों की अच्छी बिक्री से खुश हैं। रक्षाबंधन पर खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग भी मुस्तैद है। जांच दलों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित करीब 15 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिक 47 मिलीमीटर पानी करौली के सपोटरा में बरसा। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में बीते 24 घंटों में 4 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। बांध का वर्तमान जलस्तर 314 आरएल मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर सहित 12 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। हालांकि राज्य में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी का पूर्वानुमान है। हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से भरेगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने मेला क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता इस दौरान तैनात रहे।

रहेगा। उधर शेखावाटी क्षेत्र के तीर्थ स्थल लोहारगल में भादो अमावस्या मेला 5 सितंबर से भरेगा। इसे लेकर झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

जवाब तो हमें मिल गया है कि इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था सलील चौधरी का। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त आज हमारी ही तरह इबारत लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि क्या बात है भाई। गीतों का ये सुरीला सफर शायराना आशिकाना होता जा रहा है, यानी कि तुम भी चलो हम भी चले और चलती रहे जिंदगी। वैसे ये गीत आज की लिस्ट में नहीं है दोस्तों। अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। एक मैसेज मिला है कि देखा जाए तो इजहार से शुरू हुआ प्यार का सफर इंतजार की गलियों से गुजरता है, विरह के आंसू से धुलकर ये और गहरा हो जाता है और अंत में मिलन के आनंद से आनंद में डूबकर अमर हो जाता है। यही मोहब्बत का मुकम्मल चक्र है। जुबां से तो कह ना पाए कभी हम, मगर आज आंखों से सब बयां कर बैठे हैं। तुम आओगे कभी ये सोचकर ऐ सनम, सांसें भी सीने में कुछ ठहर सी गई हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। अगला कमेंट है कि यादें भी कितने खूबसूरत होती हैं, बीते हुए लम्हों को फिर से जीने का बहाना देती हैं। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादें हर खामोश शाम को खास बना देती हैं। शुरुआत में प्यार मोहब्बत में गुमसुम से एहसास के साथ एक झिझक सी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि

प्यार का इजहार नकार दिया जाए, लेकिन आवारा बादल सा दिल बेखबर और नादान भौरे की तरह गली गली मंडराते हुए किसी तरह पागल सौदाई की तरह इजहार कर बैठता है और पुकार बैठता है प्यार को। फिर शुरुआत होती है मुलाकातों की, जहां छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं।

दोस्तों सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म में जो होती हैं उसमें डबल रोल ही नहीं, जीवन में भी दो मुंह वाले दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं, तो इस बारे में भी अपने विचार भेज दीजिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर का लिखा गीत, फिल्म का नाम है हम दोनों, और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और अभिनेता तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिए जरा।

कमेंट्स मिला है कि आज आपका पहला सफर है, पर घबराएं ना, हम सब आपके साथ हैं और थोड़ा बहुत कुछ है भी तो हम श्रोता भी समझते हैं कि आज आपका पहला दिन है।

एक श्रोता मित्र हमें लिखती हैं कि आज तो हमारे भाई के घर रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ, तो कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, मगर इबारत से लगता है कि आज तो बहुत सुरेले और दिलकश गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

साथियों, सुरीला सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है नौशाद, फिल्म का नाम है राम और शाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दो नायिकाएं थीं उनके नाम बता दीजिए, लिख भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर।

हम दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया। दोस्तों आप हमें लगातार जवाब और मैसेज तो भेज रहे हैं और हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में एक बात कॉमन है, और वो क्या बात है जरा बता दीजिए। सीता और गीता इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, तो उस फिल्म का नाम लिख दीजिए।

गीता और गीता की रीमेक थी वो फिल्म। एक चेहरा मगर दो किरदार, एक शक है मगर दो अंदाज, एक रिश्ता मगर दो अलग अलग रंग। प्रोग्राम इस तरह का है। अच्छा।

यानी कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में जो बात कॉमन है वो क्या है वो तो आपने बता दी। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है डॉन और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, नाम क्या है वो बता दे हमें। और हमें आपसे ये भी पूछना है, एक गीत जो हमने आपको बताया वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, बात फैली है घर घर घर, गोरिया गाए गुनगुन। ये गीत अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि ये किस गीत का अंतरा है।

कार्यक्रम सुरीला सफर। एक साथी मित्र ने हमें लिखा है कि हम अभी राखी की तैयारी में लगे हैं और समय निकालकर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि कल नहीं सुन पाएंगे, कल हम बाहर जाने वाले हैं। और ये अगला संदेशा है कि जिस फिल्म में डबल रोल होता है वहाँ एक पात्र सीधा और दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक क्यों होता है, सोचने वाली बात है। एक साथी ने लिखा है कि अक्सर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि कभी तुम भी तो कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, तो मैं तो हमेशा इजहार करता ही हूँ, हाय रे किस्मत, शादी को इतने साल हो गए पर धर्मपत्नी सिर्फ शर्माती हुई दीवाना कह देती है मुझे और गुनगुना देती है कि बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते मैं तो हार गई रे। एक मैसेज शिकायत वाला भी मिला है पर प्यार भरा है। पटर पटर बोलती हो बहुत, ऐसा मेरे लिए लिखा है। दोस्तों, अगर आप ये समझ ही गए हैं कि आज के सुरीला सफर में हमने ऐसी फिल्मों के गीतों को चुना है जिसमें नायक और नायिकाएं डबल रोल में थे, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल ट्रिपल रोल किए गए थे, तो आपको याद हो तो उन फिल्मों के नाम लिखकर संदेश हमें भेज दीजिए।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। सुन क्या रहे हैं आप, तो हमारे हम सफर हैं। ये एक जो मैसेज मिला है हमें, कमेंट्स मिला है कि नदियां बहती है झरझर, ये अंतरा है छुनमुन पायल या छुनमुन छुनमुन फिल्म विरासत के गीत का। और विजय अमीर जी के अक्सर फिल्मों में उनका यही नाम होता था, और उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म जो थी डॉन, उन्होंने झांसी की नंदनी टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता मित्र लिखते हैं कि मुझे फिल्म मौसम की याद आ रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने डबल भूमिका निभाई थी और नायिका और उनकी बेटी के बेटे के रूप में संजीव कुमार अभिनेता थे। और धर्मेंद्र जी ने डबल रोल किया था यकीन इस फिल्म में। अब अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है चालबाज। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो दो हीरो थे उनके नाम हमें लिख भेजिए। श्रीदेवी के

हमारे श्रोता लिखते हैं कि चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ हीरो थे रजनीकांत और सनी देओल, और किसी ने अनिल कपूर भी लिखा है जो कि गलत है। और ये अगला कमेंट है कि मेरा साया में साधना का डबल रोल था और कहो ना प्यार है में ऋत्विक रोशन भी डबल रोल में थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दो फूल और दिल तेरा दीवाना तथा हमजोली में महमूद, जिगरी दोस्त जैसे को तैसा तथा प्यासा सावन, जितेंद्र, किशोर कुमार बॉम्बे का चोर, अशोक कुमार मेरी सूरत तेरी आंखें और शाहरुख खान डॉन तथा पहेली में डबल रोल में थे। तो साथियों, अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें ये बता दीजिए कि काजोल के साथ में इस फिल्म में विलन कौन थे।

मंगेशकर और कुमार सानू गीतकार थे, आरन बख्शी संगीतकार थे, उत्तम सिंह। फिल्म का नाम था दुश्मन। और एक श्रोता मित्र ने जवाब लिखकर भेजा है कि काजोल के साथ में दुश्मन फिल्म में जो विलन की भूमिका निभाई थी वो आशुतोष राणा थे। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि जैसे को तैसा, जिगरी दोस्त, बैराग, संजीव कुमार की नौ रोल वाली फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था, आंटी नंबर वन, चाची 420 और अंगूर, इज्जत में धर्मेंद्र का डबल रोल, दो कलियां में नीतू सिंह, सावन भादव में नवीन निश्चल, कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और गजब में धर्मेंद्र। तो भाई आपके जो कमेंट थे उसमें तो हमें एक बहुत लंबी लिस्ट मिल गई कि डबल रोल वाली फिल्में कौन सी थी।

डैनी का डबल रोल था फिल्म बुलंदी में और डबल रोल प्यार के इजहार पर आज आपने सुरीला सफर में शानदार कार्यक्रम पेश किया, ऐसा एक मैसेज भी हमें हमारे श्रोता से मिला है। एक कार्यक्रम में एक मैसेज और पढ़ लेते हैं कि ये जीवन ठहरने का नाम नहीं, चलने का नाम है और प्यार मोहब्बत से जिंदगी चलती है। इससे सुंदर क्या हो सकता है, हम इस संसार में अपने आप अपने अपने हिस्से की यात्रा लेकर आते हैं। बादल आसमां और कलकल करती बहती नदी यादों का समंदर लेकर आती है। आज सुरीले सफर कार्यक्रम में जो गीतों की नदियां आपने बहाई, हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल भी हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे और आज की प्यारी उद्घोषिका के साथ हमने कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक श्रोता मित्र ने हमें ये मैसेज भेजा।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित आईआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडिया।

0: प्लेयर्स, ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
3: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम

0: वहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

होली आई रे। इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है दान सिंह की, फिल्म का नाम है माई लव।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तीसरा कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार थे रोशन, फिल्म का नाम था दिल ही तो है।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बात।

0: करते होंगे।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है आशिक।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है संगम।

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार,
0: हेल्दी नमस्कार।
1: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी, सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार।
0: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
1: बिल्कुल,
0: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना।
1: बिल्कुल,
0: यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम जो विषय लेके आए उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
0: यानी कि वर्ल्ड लेक डे।
1: हाँ जी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता है वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
0: हाँ,
1: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
0: बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत एक अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना, उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
0: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहां हैं जहां उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहां रह रहे हैं वहां पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहां रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आप लोग बस आते जाते रहिएगा।
1: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता है वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं, वहाँ पे उनका पूरा सब दोस्त है, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण हैं, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
0: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
0: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे टिप्स की, जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके।
0: बिल्कुल,
1: जो बहुत बड़ी समस्या आजकल।
0: ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर, तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
0: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
1: जी,

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए। हाँ, कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते हैं,
1: कड़वाहट नहीं कहते,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर,
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना, बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे हैं, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था।

0: जी, और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुगत नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी।
1: जी।
0: उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
1: बिल्कुल, और आप खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था।
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें देखा तो उनके भीतर भी की जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफर था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, तो मुझे जरूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल, और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
1: बिल्कुल, उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
0: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता
1: है। बिल्कुल, और उन्होंने लाकर दिखाया।
0: और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हम क्या कर सकते हैं।
1: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है, कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ, और क्या, ऐसे तो
0: पता है आरती एक हल्की सी शर्मिली से मुस्कान दे रही है साथ।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इन्होंने, एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं

0: सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: जी, और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है, वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कहीं उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल, एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती है कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब, और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
1: बिल्कुल सही कहा, और हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे, क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनकी उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों डटकर उसका सामना,
0: हार नहीं मानना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: एक गीत सुन ले।
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे, होता रहे, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है,
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं, झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो किस प्रकार का है, कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, अपने संदेश लिखा है, तो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों

0: और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं। जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं, एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं, और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं,
1: बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है, जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है, और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है, तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताई, जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम अब बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है, तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहां उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है, वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो अब वहां से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहां पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: जब हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे, गीत सुन ले।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: नहीं
0: सुंदर
1: देखो
0: गीत था ना।
1: बहुत प्यारा। और ये जो बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं।
1: कोई सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी निर्भर करता है।
0: अपने घर को किस तरह से सजाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
1: आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट

0: फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपके आवास पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
1: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
0: बिल्कुल।
1: अब हम ये स्वावलंबी बनना
0: जी, बिल्कुल। हाँ, अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श कर लीजिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े,
0: जरूरत ही ना पड़े
1: चीज की।
0: जी।
1: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए, बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए, बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपने अपनी सारी जरूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है, अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें, वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीजें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है उसको आप पूरा कर सकते हैं, और ये सब चीजें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
0: बिल्कुल। और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या
1: गीत संगीत

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई अच्छे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, या सरकारी योजनाएं हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उनपे अमल करना चाहिए। साथ ही आजाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है, घर में भी हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो दूर से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे, दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं, कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे, और अलमारी जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें, सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है, और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं, इसमें तो जो सीलन की मैक है वो आती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: भी जाते हैं,
1: जो कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीजें करने से और क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है, और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए, और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें, इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों, कभी कभी ऐसा

0: लगता है कि अरे अभी दो दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है, या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता जी लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है, और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहां पर सीलन ज्यादा होती है, तो ये चीजें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीजें आप जो बताए ना, ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी

0: अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सूख सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते, भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीजें आप जो बताए ना, ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर चलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है,
1: बहुत देर तक बनी रहती है, और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है ना। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से। और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएं,
0: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी। अगर थोड़े से भी गीले
1: काले कलर के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ जाए,
0: बिल्कुल,
1: और वो दिखाई देती है असल में।
0: बिल्कुल, तो जो भी गीले कपड़े हैं गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है। क्योंकि जहां से भी टपक रहा है पानी या जहां पे सीलन आ रही, बहुत बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहां सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहां पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
1: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है। और अब अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए।

0: कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है।
1: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती।
2: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्धि है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है?

0: मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम, DHL का जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग। रेलवे का काम होता है, DHL से आता है, तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे, है ना?
1: जी।
0: बढ़िया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पड़ता है।
0: कि तुम नाराज न होना, तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे इसलिए।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना, जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। मैम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफ़ा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा है आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाज़ें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफ़ा जी बताइए क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो तो आप?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि इससे कोई दवाई का सहायता नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी आजकल तो दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए।

0: कि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
1: अरे वाह क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
0: तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतना ड्रग डेवलप, इतना फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
1: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
0: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन नहीं करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
1: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो, तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
0: जी हाँ, हालांकि कई मेडिकल स्टोर पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं, तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए भी ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
1: जी जी, मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: फर्क तो इतना रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है वो बहुत सारे जगहों पर मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
1: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
0: मैम एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी BV No. 1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम BV No. 1।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो अगर मांडो पे है,
0: मांडो ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, हमारे श्रोताओं को कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडो इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है।
0: जी जी, देवास भी है, है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह मंदिर हैं।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा?
1: हाँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड भी है, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD में से ही खरीदते थे।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
1: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह के। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
0: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद अब आराम कर रहे
1: हैं। आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं,
0: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे। तो इसमें
1: हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता हूँ।
0: तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
1: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
0: जी जी,
1: तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरबा हुए।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से।
0: अच्छा,
1: मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी।
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम
0: जी। जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं है हमारी। जी क्या
1: सब बात? चाहे जैसी भी हो, खुलेआम बोलते हैं, है ना।
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियाँ आपने खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, इमिटेट किया है
0: जी।
1: सब अच्छा लगता है शायरी, तो छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: है? असम में, सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर्स टू पार्ट है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है। हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुमाके भालोबासी, वो बोलते हैं मैं तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका लैंग्वेज।
0: और बच्चे को शुवाली,
1: शुवाली जी जी जी, आपने सही पकड़े है। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, चाय के दर चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है
0: जी जी।
1: तो कोई आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे पंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल नागपुर झांसी दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से?
1: हाँ, सरकार से पेंशन मिल रही है। हाँ। और सब चीजें मिल रही है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, चूंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया मैं।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: उनके बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही थी, यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता।
0: देखिए ना, जब हम डीसी को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी बीहड़, इतनी तकलीफ दे यात्रा भी करते हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है। आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, तो
1: बिल्कुल
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर? आपकी बहन की राखी आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे। और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम, मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं। अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई, राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो। तो बड़ा अच्छा उसे लगता है, 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई कुछ?
1: वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
0: अच्छा जी जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को।
1: जी जी,
0: और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो
1: जी जी जी,
0: चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंध

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह किन्नारे बोल रहा था।
0: जी बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: जी बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के बाद लगा।
0: जी बिल्कुल, एक बार क्या इसकी पहले बात हुई थी पर भी कई महीने पहले, तो बताइए क्या हाल है अब भोपाल का, क्या हाल है भोपाल में, क्या गतिविधियाँ चल रही है आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल में, बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई, समय से आ गई।
0: जी तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है। हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है।
1: हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी जी जी,
1: और मेरी बहने, तीन बहने गई है तीर्थ यात्रा पे।
0: अच्छा तो राखी कैसे बांधेंगे 28 तारीख को? रक्षा
1: आज, आज सभी ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में।
0: जी जी,
1: और वहाँ से कल सभी बहने हमारी गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहाँ सब बहने आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा।
0: अच्छा।
1: हम तीन चार दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के, उनका स्वागत करना रहता है।
0: क्या बात
1: जब
0: है भाई,
1: हमारे तीर्थ से जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह,
1: कहा ये जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक, तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं मंदिरों में, वहाँ भोजन करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो फिर घर लेके जाते हैं। जी
0: वाह वाह, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया, आप जाएंगे और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है तो राखी भी बन जाएगी फिर तो।
1: जी जी जी,
0: तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों
0: जी।
1: को पसंद जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया, और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज, मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा,

0: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों
1: हाँ
0: ईद मिलन करके और गाँव
1: जी
0: चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
1: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं। तो आपने
0: जी
1: क्या
0: जी जी
1: देखा बताइए आप।
0: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं देखने के लिए गया था।
1: हाँ,
0: और
1: श्रवण सिंह के नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की, तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो जब भी जंगल में जाए या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़े तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़े। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह के नारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना। फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ जो क्लासिक रहती है, और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया
0: जी। तो लग गया है फोन।
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन बार में देश गान आता है, रामचरित मानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूली बिसरी गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन नहीं है भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है।

0: ये मतलब धर्म का भाई भी करते हैं, जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती और धर्म का भाई भी ना प्रीत निभाते हैं।
1: भाभी को भी राखी बांधी जाती है ऐसा मैंने सुना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
1: जी
0: हमारे राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यहाँ पत्रों का शहर बनी है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर बनी है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है तो आज भी मेहमानों के राव में फूल बिकाए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा।
0: नंबर वन
1: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
0: सेवाया बनाते हैं और बहने आती है, राखी बांधते हैं और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मुल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी दी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
1: जी जी।
0: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी दी थी।
1: जी जी। और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
0: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते हैं, ऐसी भी परंपरा में।
1: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो
0: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: जी क्या बात है भाई, और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, कि मेरी बहन का गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी कहना है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा के आदमी देवानंद फिल्मा का गाना है।
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बेटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं।
1: जी।
0: तो पत्र भी लिखते हैं?
1: जी, अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम है।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए, पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को, भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया। नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं, मैं तो लिखता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: थी। बाद में शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था,
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
1: था। मैंने तो लगभग संजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाए जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी। तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोराई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम का
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम है हिमालय की गोद में, और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
0: जी, मुकेश की आवाज़ में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

तो दोस्तों ये था आज का हलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हलो फरमाइश के लिए

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को आशा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियाँ? उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी, और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी हमारा इंतजार। तो लीजिए सखियों, आपका इंतजार समाप्त हुआ। आज हम फिर हाजिर हैं नए विषय लेकर, जिसमें हम आपको देंगे नई नई जानकारी और सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है बढ़ती महंगाई में स्वरोजगार की ताकत, और आपको जानकारी देंगे विश्व झील दिवस के बारे में। साथ ही विविधा में हम जानेंगे क्या घी तेल से बेहतर है। सखियों, महंगाई, ये सब सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राशन, सब्जी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बिजली का बिल, गैस का खर्च, और ऊपर से अचानक से आ जाने वाले छोटे बड़े खर्च, और हमारा बजट। क्योंकि घर का बजट बनाने वाली हम महिलाओं से बेहतर महंगाई का असर शायद ही कोई समझ सकता है। पहले जिस सामान में और बजट में महीने का खर्च चल जाता था, अब उसी सामान के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले असर हमारी रसोई और घर के बजट पर दिखाई देती है। ऐसे में क्या हम सिर्फ खर्च कम करके ही महंगाई का सामना कर सकते हैं? नहीं ना, कहाँ तक हम कटौती करेंगे? क्योंकि केवल एक नौकरी या एक ही आमदनी पर निर्भर रहना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता है जो हमारी आमदनी भी बढ़ा सकता है और हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देता है। सखियों, वह रास्ता है स्वरोजगार। स्वरोजगार का सीधा सा मतलब है अपनी योग्यता, हुनर या किसी व्यवसाय के जरिए खुद कमाई का रास्ता बनाना। सखियों, इसके लिए हमेशा बड़ी दुकान, बहुत ज़्यादा पैसा या बड़ा कारोबार जरूरी नहीं होता। क्योंकि स्वरोजगार की बात आती है तो हम सोचती हैं इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और तरह तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, और काम करने के लिए बहुत सारी जगह होनी चाहिए। सखियों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो। कई बार घर में मौजूद साधनों और अपने हुनर से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। जैसे किसी महिला को खाना बनाने का अच्छा हुनर आता है तो वह घर से ही टिफिन सेंटर सेवा शुरू कर सकती है, या फिर क्लाउड किचन बना सकती है। अगर आपको अच्छा अचार बनाना आता है और घर में बनने वाला अचार परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को भी पसंद आता है, तो क्यों ना छोटे स्तर पर अचार बनाकर बेचना शुरू किया जाए। अगर सिलाई आती है तो पहले आसपास के लोगों के कपड़े बनाकर दे। अगर पढ़ाने का हुनर है तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। मेहंदी या सौंदर्य से जुड़ा काम आता है तो ब्यूटी सैलून वगैरह खोल सकती हैं। यानी शुरुआत के लिए हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। सखियों, आज के समय में मोबाइल फोन भी हमारे काम को आसान बना सकता है। अपने बनाए सामान की अच्छी तस्वीर खींचिए, परिवार, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को भेजिए। धीरे धीरे लोग आपके काम को जानने लगेंगे। मान लीजिए आपने घर पर नमकीन या पापड़ बनाए, पहले पड़ोस की दो चार सखियों को खिलाया, उन्हें पसंद आई तो उन्होंने भी आपको ऑर्डर दिया और उन्होंने आगे किसी और को बताया। इस तरह धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लगेगा। सखियों, छोटा काम धीरे धीरे व्यवसाय में बदलने लगेगा। आज के समय में मोबाइल फोन भी स्वरोजगार का एक बड़ा साधन बन गया है। सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ऑनलाइन व्यवसाय करके भी आप काम कर सकती हैं। यानी बाजार अब केवल दुकान या उद्योग तक ही सीमित नहीं रह गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के लिए पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, बागवानी, खेती से जुड़े छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों का निर्माण जैसे कई काम करके आसानी से आमदनी का जरिया बना सकती हैं। सखियों, अब आप सोच रही होंगी कि स्वरोजगार शुरू कैसे करें, तो सबसे पहले अपने हुनर को जानिए, सबसे पहले उससे जुड़े और बाजार को समझिए।

देखिए लोगों को किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, कितने लोग आपका सामान खरीद सकते हैं, फिर छोटे स्तर पर शुरुआत कीजिए। कमाई और पूरी खर्च की जानकारी ले सकती हैं, सामान खरीदने, पैकिंग, बिजली, आने जाने का खर्च और दूसरे सभी खर्च निकालने के बाद बचत कितनी है, सामान कहाँ से आएगा, इस तरह की सारी जानकारी रखकर ही स्वरोजगार शुरू करें। दूसरा कदम है छोटी शुरुआत। सीखियो, पहले कम सामान बनाइए, लोगों की प्रतिक्रिया जानिए, फिर धीरे धीरे काम बढ़ाइए। तीसरी जरूरी बात है गुणवत्ता। ग्राहक को अच्छा सामान और अच्छा व्यवहार मिलेगा तो वह सामान लेने दोबारा आएगा और दूसरों को भी बताएगा। छोटे व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी ग्राहक का भरोसा होता है। और चौथी बात है कमाई के साथ बचत भी करनी है। सखियो, स्वरोजगार से पैसा आने लगे तो पूरी कमाई खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा व्यवसाय में दोबारा लगाना चाहिए और कुछ हिस्सा बचत के लिए रखना चाहिए। स्वरोजगार का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति तुरंत अपना व्यवसाय शुरू कर दे। काम शुरू करने से पहले बाजार की मांग, लागत, मुनाफा और जोखिम को समझना जरूरी है। जरूरत पड़े तो बैंक, सरकारी विभाग, जिला उद्योग केंद्र या स्वरोजगार से जुड़ी जानकारियां भी ली जा सकती हैं। सखियो, आज सरकार की ओर से भी छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं और लोन सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कोई भी योजना लेने से पहले उसकी आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें और नियम कायदे समझकर ही आगे बढ़ें। सखियो, महंगाई को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन स्वरोजगार अपनाकर हम अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं, जिससे महंगाई की चिंता करने की बजाय अच्छे से अपने परिवार को चला सकती हैं। सखियो, व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता, शुरुआत छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए आज घर से ही शुरू किया गया छोटा काम कल हमारी एक पहचान बन सकता है। तो स्वरोजगार अपनाएं और स्वयं आत्मनिर्भर बने। सखियो, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना करवा दिया जाए आपका मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं ये गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, आपने सुना ये गीत? उम्मीद करती हूँ आपको यह गीत बहुत पसंद आया होगा। सखियों, जब हम झील का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? चारों तरफ फैला शांत पानी, किनारे पर हरियाली, पानी में तैरते पक्षी और ठंडी सी हवा। झील देखने में जितनी सुंदर लगती है, हमारे जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। झील केवल पानी से भरी कोई जगह नहीं है, यह अपने आसपास के पूरे पर्यावरण को संभालने वाली एक प्राकृतिक व्यवस्था है। सखियों, झीलें इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों, मछलियों, पक्षियों और अनेक जीव जंतुओं का घर होती है। इसी महत्व को समझने और लोगों को झीलों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 27 अगस्त यानी आज ही के दिन विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2024 के अपने प्रस्ताव के माध्यम से इस दिवस को आधिकारिक तौर पर नामित किया और 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया। 27 अगस्त 2025 को दुनिया भर में पहला आधिकारिक विश्व झील दिवस मनाया गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि झीलें प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं और इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सखियों, इस वर्ष मनाए जा रहे दूसरे आधिकारिक विश्व झील दिवस का मुख्य ध्यान जलवायु लचीलापन और झीलों का पुनरुद्वार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण संकट में फंसी झीलों को

बचाना है। हमारी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कई विशेष पहल की जा रही हैं, जैसे देश के प्रमुख साइटों और झीलों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को प्रकृति पर्यटन और सतत आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा कई शहरों में नागरिक समूहों और स्थानीय प्रशासन द्वारा झीलों से जलकुंभी हटाने, गाद और कीचड़ निकालने और सीवरेज के पानी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सखियो, विश्व झील दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की अनमोल धरोहर इन झीलों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब जरा सोचिए, हमारे आसपास की झीलें धीरे धीरे सूख जाएं या गंदगी से भर जाएं तो क्या होगा? इसका सबसे पहला असर पानी पर पड़ेगा। झीलें वर्षा के पानी को अपने अंदर जमा करती हैं और आसपास के जल चक्र को बनाए रखने में मदद करती हैं। सखियों, हम इंसानों के अलावा पक्षियों और जीव जंतुओं का जीवन भी इन पर निर्भर करता है। सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी दूर दूर से झीलों और जलाशयों तक आते हैं। अगर झील में पानी और भोजन नहीं होगा तो इन पक्षियों का सहारा भी नहीं रहेगा। शहरों के फैलाव के कारण झीलों के आसपास निर्माण बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी झीलों में पहुंच जाता है। एक और समस्या है प्लास्टिक। हम अक्सर घूमने जाते हैं तो पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट या दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, और अगर वही कचरा झील के किनारे छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वह पानी तक पहुंच जाता है और देखने में हमें लगता है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ एक बोतल फेंकी है, लेकिन जब हजारों लोग ऐसा करते हैं तो यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए इन झीलों को बचाने की शुरुआत सरकार के साथ साथ हम सबको करनी चाहिए। जब भी हम झील या जलाशय के आसपास जाएं तो वहां कचरा ना फैलाएं, पूजा सामग्री उसमें ना डालें, उसमें डालने की बजाय उसका निस्तारण कहीं और करें। सखियों, अपने साथ साथ बच्चों को भी झीलों का महत्व समझाएं, खुद भी प्रेरित हों और अन्य लोगों को भी झीलों को बचाने के लिए प्रेरित करें, जिससे झील बचेंगी तो पानी बचेगा, जीव जंतुओं की रक्षा होगी और प्रकृति भी संरक्षित होगी। तो सखियों, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए एक और प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: यह गीत बहुत पसंद आया होगा। अब विविधा में हम जान लेते हैं क्या घी तेल से बेहतर है। सिखियों, कई लोग कहते हैं कि घी खाइए, घी से ताकत आती है। वहीं कुछ लोग तेल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो क्या घी बहुत अच्छा है और तेल खराब है, या फिर बात कुछ और है? आइए इसी बात को आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि घी और तेल दोनों ही वसा यानी फैट के स्रोत हैं, और शरीर को थोड़ी मात्रा में फैट की ज़रूरत होती है। फैट शरीर को ऊर्जा देता है और कुछ ज़रूरी विटामिनों को शरीर में इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है इसकी मात्रा। घी में सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना बेहतर माना जाता है। वहीं कई वनस्पति तेलों में अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा अधिक होती है। इसका मतलब यह नहीं कि घी तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको घी पसंद है तो दाल रोटी सब्जी में थोड़ी सी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सोचकर कि घी जितना ज़्यादा खाएं तो उतनी ही ताकत मिलेगी, यह सोचना गलत है। सखियों, अब बात करते हैं तेल की। आज के बाज़ार में कई तरह के तेल मार्केट में मिलते हैं, जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। हर तेल की अपनी अलग अलग पोषण संरचना होती है, इसलिए किसी एक तेल को हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे बताना सही नहीं होगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि तेल की मात्रा भी कम ही खानी।

चाहिए। सिखियो, कई बार हम सोचते हैं कि अगर तेल की जगह घी इस्तेमाल कर लिया जाए तो खाना अपने आप स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सेहत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने घी खाया या तेल। घी हमेशा तेल से बेहतर नहीं हो सकता और ना ही तेल हमेशा घी से खराब हो सकता है। दोनों का इस्तेमाल समझदारी और सीमित मात्रा में किया जाए तो संतुलित भोजन का हिस्सा हो सकता है। तो सखियों, अगर आपकी मम्मी अब की बार आपको खाने में 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा घी डालकर यह कहे कि घी खाने से ताकत आती है, तो जवाब दीजिए, अच्छा वही है जो सही मात्रा में लिए जाए और हमारे पूरे आहार को संतुलित बनाए। तो सखियों, आपसे बातें करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। खुश रहें, खुशहाल रहें, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे नए विषय व जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत आपकी रेडियो सखी आशा गुप्ता को। सखियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युवाणी। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बदलते समय के साथ बदलते हैं सवाल, बदलती है सोच और बदलते हैं नजरिए। इन्हीं मुद्दों और विचारों को लेकर हम फिर एक बार आपके साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। कभी कभी जिंदगी भी ना बड़ा अजीब सा खेल खेलती है। जिस चीज के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, रातों की नींद कम करते हैं, दिन भर उसी के बारे में सोचते हैं और फिर जब नतीजा सामने आता है तो लगता है जैसे किसी ने बस एक शब्द लिख दिया हो, नहीं हुआ। बस नहीं हुआ। एग्जाम क्लियर, नहीं हुआ। इंटरव्यू में सिलेक्शन, नहीं हुआ। जिस काम को शुरू किया था वो चल नहीं पाया, या जिस सपने को लेकर दिल में पूरा एक शहर बसा लिया था वो सपना भी अधूरा रह गया। और उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ शायद हार नहीं देती बल्कि वो सवाल देता है, अब आगे क्या? क्योंकि हम में से बहुत से लोग असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह देख लेते हैं। लेकिन क्या हर फुल स्टॉप सच में कहानी का अंत होता है? शायद नहीं। कभी कभी वही फुल स्टॉप एक नया पैराग्राफ शुरू करने का पहला छोटा सा ठहराव होता है। और आज की बात भी शायद इसी ठहराव की है। असफलता को अंत नहीं, आगे बढ़ने का एक अवसर मानो। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का था आरव। आरव का एक सपना था, उसे एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना था। उसने तैयारी शुरू की, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना ली, हर किसी से बस यही कहता था इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। घरवालों को भी भरोसा था और आरव को खुद पर भी। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, आरव का नाम लिस्ट में था ही नहीं। उसने एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, फिर उसने तीसरी बार देखा, लेकिन नाम तो था ही नहीं। उस दिन आरव ने किसी से ज्यादा बात नहीं की, फोन साइलेंट कर दिया, दोस्तों के मैसेज नहीं खोले। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ परीक्षा नहीं हारी बल्कि सबके सामने हार गया है। अगले कुछ दिन वो बस एक ही बात सोचता रहा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक शाम उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने आरव से बस इतना पूछा, तुम्हारी परीक्षा में क्या कम रह गया? आरव ने कहा, दादाजी मैं हार गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैंने पूछा क्या कम रह गया, ये नहीं पूछा

कि तुम खत्म हो गए या नहीं। आरव अब चुप हो गया। दादाजी ने कहा, अगर एक कोशिश से सब मिल जाता तो अनुभव नाम की कोई चीज होती क्या? अब तुम्हें ये पता चल गया कि कहाँ गलती हुई, कहाँ समय कम पड़ा, किस चीज पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। पहले तुम्हारे पास सिर्फ सपना था, अब तुम्हारे पास अनुभव भी है। उस रात शायद पहली बार आरव ने अपने रिजल्ट को हार की तरह नहीं देखा। उसने अपनी गलतियां लिखी, अपनी तैयारी का तरीका बदला और अगली कोशिश में, हाँ ये कहानी इतनी फिल्मी नहीं है कि सब कुछ तुरंत बदल गया। उसे फिर मुश्किलें आई, थकान हुई, डर लगा, लेकिन अब एक फर्क था। पहले उसे असफलता से डर लगता था, अब वो उससे सीखने लगा था। और शायद यही फर्क हम सबकी जिंदगी में भी जरूरी है, क्योंकि असफलता हमेशा ये नहीं बताती कि हम कर नहीं सकते। कई बार वो सिर्फ इतना बताती है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ नया ट्राई करके देखो। कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी अपनी तैयारी, कभी अपनी सोच, और कभी कभी बस थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है खुद को। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट देखकर पूरी जिंदगी का रिजल्ट घोषित कर देते हैं। एक इंटरव्यू खराब हुआ, मुझ में टैलेंट ही नहीं है। एक एग्जाम नहीं निकला, अब कुछ नहीं हो सकता। एक काम नहीं चला, मैं बिजनेसमैन के लिए बना ही नहीं हूँ। अरे भाई एक मिनट, एक मैच हारने से कोई खिलाड़ी खेलना कैसे छोड़ सकता है? तो फिर जिंदगी के एक मैच में हार कर हम पूरी सीरीज के बारे में क्यों सोच लेते हैं? असफलता दर्द देती है, इसमें कोई शक नहीं। और ये कहना भी आसान है कि फेलियर को पॉजिटिव लो। नहीं, उस वक्त दुख होता है, गुस्सा भी आता है, कभी खुद पर शक होता है और कभी लगता है कि बाकी सब लोग आगे निकल गए और हम वहीं खड़े रह गए। ये सारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या? क्या हम वहीं बैठ जाएं, या फिर थोड़ा रुक कर सांस लेकर खुद को संभाल कर ये पूछें, ठीक है इस बार नहीं हुआ, लेकिन इससे मैंने क्या सीखा? क्योंकि यही सवाल असफलता को अंत से अवसर में बदल देता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ सक्सेस दिखाई देती है। किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का स्टार्टअप चल पड़ा, किसी के लाखों फॉलोअर्स हो गए, लेकिन उसके पीछे कितनी बार रिजेक्शन मिला, कितनी बार शुरुआत करनी पड़ी, कितनी बार प्लान्स फेल हुए, ये अक्सर दिखाई नहीं देता। हम किसी के हाइलाइट्स देखकर अपनी रफ कॉपी से तुलना करने लगते हैं, जबकि हर किसी की कहानी में ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वो शायद दुनिया के सामने दिखाना ही नहीं चाहते। इसलिए अगर आज कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, तो खुद को खत्म मत मान लेना। हो सकता है कि जिंदगी बस इतना कह रही हो, थोड़ा और सीखो, अभी कहानी बाकी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असफल होने और असफल मान लेने में बहुत बड़ा अंतर है। एक बार हार जाना असफलता है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना, खुद को मान लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो शायद असली हार है। तो अगली बार जब जिंदगी किसी मोड़ पर रोक दे, जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आए, जब मेहनत का फल तुरंत ना मिले, तो बस इतना याद रखना, ये अंत नहीं है। हो सकता है कि ये वही मौका है जहां हमें खुद को पहले से बेहतर बनाना है, जहां पुरानी गलतियों से सीखना है, जहां फिर से शुरुआत करनी है, और जहां ये साबित करना है कि हमारी एक असफलता हमारी पूरी पहचान नहीं है। तो चलिए, हार को दिल में रखकर बोझ बनाने के बजाय उससे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी ठोकर नहीं लगी, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने हर ठोकर के बाद अपने कदमों को थोड़ा और मजबूत कर लिया। असफलता को अंत नहीं, आगे बढ़ने का एक अवसर मानो, क्योंकि कहानी तब खत्म नहीं होती जब एक कोशिश नाकाम हो जाती है, कहानी तब खत्म होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अगली ठोकर हमें रोकने के बजाय कुछ नया सिखाएगी और अगली कोशिश शायद हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाएगी।

0: तो श्रोताओं, आज की सुनहरी शाम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिंदास बोल का एक बेहद ही खास कार्यक्रम। हम गए हमारे स्टूडियो से बाहर और कुछ युवाओं के विचार कैप्चर किए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए उन विचारों पर नजर डालते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: हर्षिता।
0: ओके हर्षिता, आप करते क्या है?
1: मैं स्टूडेंट हूँ।
0: ओके, तो हर्षिता, आप सबसे पहले बताइए कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए?
1: हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि हर बच्चे को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब्स मिले और सब लोग मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिल सके, उनको आगे बढ़ना चाहिए हर देश के लोग।
0: लेकिन सिर्फ सरकार या व्यवस्था से ही बदलाव आए, ऐसा जरूरी तो नहीं? आपके हिसाब से युवा खुद क्या कर सकते हैं?
1: नहीं, सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते ना, युवा को खुद के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए, खुद की स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और नई नई सहयोग करना चाहिए नई नई चीजों में, सरकार को बदलने के मतलब कि अपने देश को बदलने के लिए उसमें भागीदार भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको देश के युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना हो तो आप कुछ देना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि बैठ के और सोच के कुछ नहीं होता है, बल्कि उसमें सहयोग करके साथ दे के सब कुछ बदल सकता है।
0: हेलो, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम तनिष्क है।
0: तनिष्क, आप करते क्या है?
2: मैं बीबीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ।
0: ओके, तो आपसे एक सवाल था, आज के युवाओं के सामने एजुकेशन के साथ करियर की भी बड़ी चुनौती है, आपके हिसाब से आज के समय में सिर्फ डिग्री काफी है?
2: नहीं, डिग्री के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना चाहिए।
0: जैसे
2: अपन को अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए, कुछ अलग हॉबी भी होनी चाहिए।
0: अगर कोई युवा अपनी पढ़ाई के साथ एक स्किल सीखना चाहे तो आपके हिसाब से उसे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए?
2: अगर कोई युवा स्किल सीखना चाहता है तो ये ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं बस वही करे, अपन को कुछ अलग करना चाहिए, अलग कुछ स्किल सीखनी चाहिए। मैं नर्सिंग से अलग टेक्निकल कुछ भी सीखना चाहूँ।
0: जी, यानी अपनी पहचान बनाना ज्यादा जरूरी है।
2: हाँ, अपनी पहचान बनाना सबसे ऊपर है, किसी और के साथ सबके साथ दौड़ भागना जरूरी नहीं है, अपने अलग चलना, अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है।
0: ओके, एक आखिरी सवाल, आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
2: कि बस यही कहना चाहूंगा कि अपने करियर के साथ साथ अपने स्किल्स पे ध्यान दो, डिग्री तो मिल ही जाती है, बस स्किल्स पे ध्यान दो और आगे जाके क्या अलग कर सकते हो, क्या अपनी पहचान अलग कैसे बना सकते हो उस पे ध्यान दो बस।

यार तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। ये बात सुनकर कई लोग तुरंत कहेंगे हाँ चलो दिखा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए डॉक्टर के पास जाना ही एक डरावना अनुभव बन जाता है। डॉक्टर का नाम सुनते ही बेचैनी होने लगती है, अस्पताल जाने की बात आते ही मन घबराने लगता है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी उसे कैंसिल करने का मन करने लगता है, और कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि तबीयत खराब होने के बावजूद मन करता है नहीं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो आखिर ये सिर्फ सामान्य घबराहट है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज की ये बात एक ऐसे ही डर की है जिसके बारे में शायद हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेट्रोफोबिया यानी डॉक्टर या मेडिकल ट्रीटमेंट से अत्यधिक डर। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है रोहन। रोहन को कुछ दिनों से लगातार कमजोरी महसूस हो रही है। घर वाले कहते हैं एक बार डॉक्टर को दिखा लो। रोहन कहता है अरे अरे मैं ठीक हो जाऊंगा। दो दिन निकल जाते हैं, फिर घर वाले कहते हैं चलो चलो अब अपॉइंटमेंट लेते हैं। रोहन बोलता है अरे यार कल देखेंगे ना। और जब किसी तरह अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो अचानक उसे कोई जरूरी काम याद आ जाता है। कभी कहता है आज तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, कभी कहता है अरे अगले हफ्ते चलते हैं ना। लेकिन असली बात ये होती है कि उसके मन में डर चल रहा होता है। अगर डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी बता दी तो? कई बार किसी को डॉक्टर से उतना डर नहीं लगता जितना मेडिकल रिपोर्ट्स में आने वाले जवाब से लगता है, और इसी डर के कारण जांच और इलाज टालते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर वो व्यक्ति जो डॉक्टर के पास जाने से घबराता है उसे लैट्रोफोबिया हो ये जरूरी नहीं। बड़ी जांच, ऑपरेशन या सर्जरी से पहले चिंता होना सामान्य बात हो सकती है। आखिर मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करते समय थोड़ा नर्वस होना, इंजेक्शन लगने से पहले डर लगना या अस्पताल के माहौल में असहज महसूस करना बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन जब डर इतना बढ़ जाए कि जरूरी इलाज और व्यक्ति के स्वास्थ्य के बीच रुकावट बनने लगे तब उसे गंभीरता से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके पीछे संकेत क्या हो सकते हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत ज्यादा घबराहट होना, अपॉइंटमेंट बार बार कैंसिल करना, बीमारी या परेशानी होने के बावजूद इलाज टालना, डॉक्टर या अस्पताल का नाम सुनकर ही दिल की धड़कन तेज महसूस होना, पसीना आना, हाथ कांपना, सांस तेज होना या बहुत बेचैनी महसूस होना। कुछ लोगों के लिए सफेद कोट, मेडिकल उपकरण, इंजेक्शन या अस्पताल का माहौल भी डर का कारण बन सकता है। कई बार डॉक्टर के सामने ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, इसे व्हाइट कोट इफेक्ट कहा जाता है। हालांकि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि किसी को लेट्रोफोबिया है। सही स्थिति को समझने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सलाह जरूरी हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये डर पैदा क्यों होता है? इसके पीछे हर व्यक्ति के लिए वजह अलग हो सकती है। कभी बचपन का कोई दर्दनाक मेडिकल अनुभव याद आ जाता है तो हो सकता है कि बचपन में कोई ऑपरेशन या फिर कोई इंजेक्शन का कोई बहुत ही बुरा अनुभव रहा हो, या अस्पताल में कोई डरावनी स्थिति देख ली हो। कभी किसी अपने को अस्पताल में गंभीर हालत में देखने के अनुभव भी मेडिकल जगहों के साथ डर जोड़ सकता है। कुछ लोगों में पहले से मौजूद एंग्जाइटी या पैनिक जैसी समस्याएं भी मेडिकल परिस्थितियों में घबराहट को ज्यादा बढ़ा सकती है। और कई बार सबसे बड़ा डर होता है अगर कुछ गंभीर निकल आया तो। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि टेस्ट ना करवाने से बीमारी का खतरा खत्म नहीं हो जाता है। कई बार समय पर जानकारी और सही इलाज ही बड़ी परेशानी को बढ़ने से रोक सकता है। तो अगर किसी को डॉक्टर या अस्पताल से बहुत ज्यादा डर लगता है तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले डर को स्वीकार करना, ये मान लेना कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाने से देखो बहुत घबराहट होती है, क्योंकि जब हम डर को पहचान लेते हैं तभी उससे निपटने की शुरुआत होती है। दूसरा, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपनी घबराहट के बारे में साफ साफ बता देना। ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि कोई हमें कमजोर समझेगा। अगर डॉक्टर को पहले से पता होगा कि मेडिकल जांच से डर लगता है तो वो स्थिति को ज्यादा समझदारी और संवेदनशीलता के साथ संभालने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तीसरा, किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को साथ लेकर जाना। कई बार किसी अपने की मौजूदगी भी काफी राहत दे सकती है। इसके अलावा गहरी सांस लेना और रिलैक्सेशन जैसी तकनीकों में एंजाइटी को संभालने में बहुत मदद मिलती है। और अगर ये डर इतना ज्यादा हो कि जरूरी इलाज लगातार टल रहा हो या

रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही हो तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना अच्छा कदम हो सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसी थेरेपी स्पेसिफिक फोबियाज को निपटाने में मदद कर सकती है। दरअसल डर महसूस होना कोई कमजोरी नहीं है, हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लग सकता है, लेकिन असली बात ये है कि क्या हम उस डर को समझने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके कारण खुद से जरूरी मदद दूर कर रहे हैं। कई बार हम छोटी सी परेशानी को ये सोच कर टालते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब शरीर बार बार संकेत दे रहा हो तो उसे सुनना भी जरूरी है। डर की वजह से जांच टालना, दर्द छुपाना या इलाज से बचते रहना समाधान नहीं है, तो आज

उसके कारण खुद से जरूरी मदद दूर कर रहे हैं। कई बार हम छोटी सी परेशानी को ये सोचकर टालते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब शरीर बार बार संकेत दे रहा हो तो उसे सुनना भी जरूरी है। डर की वजह से जांच टालना, दर्द छुपाना या इलाज से बचते रहना समाधान नहीं है। तो आज की बात बस इतनी सी, डॉक्टर के पास जाने से पहले हल्की घबराहट होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर का नाम सुनते ही डर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अपॉइंटमेंट लगातार कैंसिल होने लगे और बीमारी होने के बावजूद इलाज से बचा जाने लगे, तो उस डर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुद से कोई डायग्नोसिस करने के बजाय सही हेल्थ केयर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाकर उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि डर को छुपाने से नहीं, समझने से उसका सामना करना आसान होता है। और याद रखिए, डॉक्टर से बचना बीमारी का इलाज नहीं, लेकिन सही समय पर मदद लेना स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम जरूर है।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान।
4: अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
5: नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
6: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला, और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
5: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
6: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
5: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ

तो दोस्तों आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और शायद आपकी सोच में एक छोटा सा बदलाव भी लाई होंगी। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों के करीब जाने का। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए विचारों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।

0: कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30, साथ ही 8:06 पर। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7 आकाशवाणी जयपुर से। रात 8 का समय रहेगा संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़ी का संदेश। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:15 का। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:15 से। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा रात 11 आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम वंदनवार चिंतन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:05 पर। झरोखा का कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस गान संगीत सरिता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 7:30 का। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सवेरे 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। सुगम संगीत का समय रहेगा सवेरे 8:15 का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा सवेरे 8:30 का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे और दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से।

विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:10 का, 10:01 का, 11:01 पर, दोपहर 12:05 पर, 12:16 पर, 1:05 पर और दोपहर 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और दोपहर समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:15 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा शाम 5 बजे का। युवानी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे और रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा शाम 7 बजे का। लोक संगीत आप सुनेंगे रात 8:15 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 का और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का यह सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फिल्म बरसात के इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आरडी बर्मन का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अनुराधा पोडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म के साथ। गीतकार हैं भैरव अरुण और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: पमीला जैन की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म विवाह से ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। प्रदेश में 309 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 900 से अधिक दावेदारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से शुरू होगा। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कल से एक सप्ताह तक धीमी पड़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश भर में खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर सहयोग मिले, इसके लिए समुचित खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज VC के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि देश का खेल तंत्र अब केवल बुनियादी ढांचे और पदकों तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल पहल लोगों को फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत माय भारत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश भर में हुए इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के एक निजी कॉलेज से इस कार्यक्रम से VC के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। प्रदेश भर में खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से युवाओं को खेल संबंधी

0: योजनाओं से सीधे जुड़ने और अपने विचार रखने का अवसर मिला। अजमेर में हुए कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी।
1: मेरा नाम अर्जुन परमार है और मैंने रिसेंटली इंडिया का प्रतिनिधित्व फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में किया, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करे। और जो आज के खेल की स्थिति है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो पहले का ग्राफ है और अभी का ग्राफ है, हम उसे कह सकते हैं काफी ज्यादा ऊपर बढ़ा है। कई ज्यादा साई सेंटर खुले हैं।
2: मेरा नाम आतिफ जाट है और मैं कबड्डी खेल से हूँ और पिछले साल नेशनल में मेडल किया था। और आज जो प्रोग्राम हुआ है काफी अच्छा प्रोग्राम था और जो भारत में मतलब खेल को लेकर जो फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड हो रही हैं उसको देखते हुए 2036 का जो ओलंपिक है उसमें डेफिनेटली भारत अच्छा करेगा और मेडल का दावेदार होगा।
0: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डो में चुनाव के लिए आज पहले दिन 900 से अधिक उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डो के लिए 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। डीग नगर परिषद के 40 वार्डो के लिए आज पहले दिन 34 प्रत्याशियों ने, वहीं धौलपुर के बाड़ी नगर पालिका के लिए 35 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अगले महीने 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। रक्षाबंधन और रविवार का अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र 29 और 31 अगस्त को ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, वहीं 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 14 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर निगम कार्यालयों में दावेदारों की गहमा गहमी बढ़ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पार्षद पद के लिए स्थानीय सक्रियता, जीत की संभावना और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई स्थानों पर तीसरे के प्रत्याशियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी बाप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, आम आदमी पार्टी आप और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रियता शुरू हो गई है। भारत अगले महीने होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर भी दृष्टिकोण साझा किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से हनुमानगढ़ में शुरू हो रहा है। लोक देवता गोगा जी की स्मृति में लगने वाले इस वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं।
3: गोगा मेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र और बैरिकेडिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और अपराध रोकथाम के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नौर थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने, अवैध संपत्तियां फ्रीज करने तथा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग बिरंगी राखियों के साथ ही पूजन सामग्री, मिठाई, श्रीफल और मेवों की खरीदारी की जा रही है। समय के साथ ही रक्षा सूत्र ने कई आकर्षक और नए रूप धारण किए हैं। फैंसी राखियों के साथ ही सोने, चांदी और कई तरह के कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध है। रक्षाबंधन के मौके पर सलुम्बर और श्रीगंगानगर जिले सहित विभिन्न स्थानों पर रक्षा का वचन कार्यक्रम रखा गया। महिला सुरक्षा को समर्पित इस कार्यक्रम

0: में महिला अधिकारों और साइबर सुरक्षा की भी जानकारी दी गई। राजसमंद के कांकरोली में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण का विशेष अभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर जिले में सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं ने नशा मुक्ति की राखी बांधकर छात्रों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। मतदाता जागरूकता का संदेश वाली राखियां भी लोगों को लुभा रही है। उधर बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों में भी रक्षाबंधन पर्व पर उत्साह का माहौल है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर संपूर्ण समाज से प्रेम और विश्वास के बंधन में जुड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संकल्प का पर्व है। रक्षा सूत्र में रिश्तों के प्रति कर्तव्य निभाने का दायित्व शामिल है। विश्व संस्कृत दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात 8 बजे शुभकामना संदेश प्रसारित होगा। प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाएगा। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन होने के साथ ही साहित्य, दर्शन, कला और बौद्धिक परंपराओं से गहरे से जुड़ी हुई है। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शास्त्री कौशलेंद्र दास ने कहा कि संस्कृत भाषा देश की सभ्यता और इतिहास का प्रतीक है। संस्कृत दिवस भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है।
1: वेदों से लेकर उपनिषदों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी से जगतगुरु शंकराचार्य के अद्वैत और जगतगुरु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत तक, महाकवि कालिदास के काव्य धारा से लेकर चरक सुश्रुत के चिकित्सा विज्ञान तक संस्कृत में जीवन के हर पक्ष को शब्द, काव्य और दृष्टि प्रदान की है। संस्कृत भारत की सीमाओं को लांघ कर तिब्बत, चीन, जावा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अरब, यूरोप, म्यांमार, नेपाल सभी देशों में संस्कृत लिखी जा रही है, बोली जा रही है और संस्कृत के पुरातन ग्रंथों पर काम हो रहा है।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार प्रदेश में धीमी होने की संभावना है। इससे अधिकतर हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। 4 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बरसात की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इस मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 15% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार डीग, भरतपुर, बीकानेर और फलौदी में अत्यधिक बरसात हुई है। अजमेर, अलवर, कोटा और जोधपुर सहित 22 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। वहीं जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और जैसलमेर सहित 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। प्रदेश में 309 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 900 से अधिक दावेदारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से शुरू होगा। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कल से एक सप्ताह तक धीमी पड़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में अगस्त माह के दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियां जारी रहीं। जिले में चुनाव को लेकर मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण और कानून व्यवस्था की तैयारियां की गईं। वहीं स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा अभियान के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले की 14 नगरीय निकायों में कुल 5,97,601 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 3,10,345 पुरुष, 2,87,248 महिला और 8 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में लक्ष्मणगढ़, खाटू श्याम जी,

0: दांता, नीम का थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, रिंगस, अजीतगढ़ और पलसाना में मतदान होगा। दूसरे चरण में सीकर, रामगढ़, शेखावाटी, लोसल और धोद में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी। नगर परिषद फतेहपुर का मतदान पहले 11 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन भाद्रपद अमावस्या को होने वाले धार्मिक आयोजनों और संभावित यातायात दबाव को देखते हुए इसकी तारीख बदलकर 9 सितंबर कर दी गई है। चुनाव की तैयारियों के तहत जिले में 185 एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्हें मतदान केंद्रों का निरीक्षण, कानून व्यवस्था पर नजर, आदर्श आचार संहिता की पालना और चुनाव संबंधी सूचनाओं के तुरंत आदान प्रदान की जिम्मेदारी दी गई है। मतदान दलों के प्रशिक्षण और रवानगी के लिए विभिन्न सरकारी भवन और खेल मैदान भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूचियों के अपडेट, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाओं और संवेदनशील तथा क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को चुनाव काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने और निर्धारित समय पर सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। जिले में चुनाव के दौरान साइबर ठगी से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने फर्जी लिंक, OTP, QR कोड, फिशिंग ईमेल और फेक वीडियो से सावधान रहने की अपील की है। मतदाता सूची या मतदान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने और साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला खेल स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद किया गया तथा राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा में NCC कैडेट्स और NSS स्वयं सेविकाओं ने जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने लोगों को समय पर जांच और उपचार कराने का संदेश दिया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में टीकाकरण, परिवार कल्याण, मौसमी बीमारियों, प्रसव, ANC और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से जुड़े कामों की समीक्षा की गई। बरसात को देखते हुए अस्पतालों में भवन, बिजली और अग्नि सुरक्षा की जांच कराने तथा जर्जर भवनों में चिकित्सा सेवाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। डायरिया और उल्टी दस्त की रोकथाम के लिए पानी के नमूनों की जांच और मच्छरों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां करने को कहा गया। टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, एक्सरे और निक्षय पोषण योजना का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की हाल ही में बैठक हुई। बैठक में दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए। अवैध कट पर साइन बोर्ड लगाने, ग्रामीण सड़कों पर रेडियम युक्त संकेतक लगाने और प्रमुख स्थानों पर यातायात व्यवस्था सुधारने पर चर्चा हुई। जिले के प्याज को एक जिला एक उपज तथा अरडू को एक जिला एक वनस्पति में शामिल किया गया है। ODOP नीति के तहत प्याज और अरडू आधारित उद्यमों को ऋण, तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार 21वीं सदीरा भारत माए नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय किन्नो। प्रदेश माए 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। पहला दिन 932 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल किन्ना। उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल शुरू भेला। राज्य रा घनखर हल्का माए कालू 1 सप्ताह टाइम बिरखा मंदी पड़ बारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकार 21वीं सदीरा भारत माए नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय किन्नो है। वह आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

0: जरिए बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि खेल प्रतिभावान हर लेवल माथे मदद मुहैया करावन सारू जरूरी खेल तंत्र विकसित करियो चाहियो है। प्रधानमंत्री कहो कि खेल केवल तमगा जीतन ताई सीमित नहीं है बल्कि विकसित भारत बनावन माए देश री खेल प्रतिभावां और नौजवाना न जोड़बारो अभियान है। वह देश माए खेलना रे बेहतर करियर और पेशारा तौर सामी आवन माथे खुशी जताई। श्री मोदी कहो कि खेल चैंपियन बनवा सागे बेहतर प्रतियोगी बनबोई सिखावे है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: ई मौके युवा मामला तर खेल मंत्री मनसुख मांडविया कहो कि देश रो खेल तंत्र अब केवल बुनियादी ढांचा और तमगा ताई सीमित नहीं है। वह कहो कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल सरीखा जतन जनता ने फिटनेस ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन री सीख देवे है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 रा सिलसिला माए मेरा युवा भारत माई भारत री ओरू आखा देश माए राखी जा इन कार्यक्रम माए राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रा हर जिला रा दो दो कॉलेजां रा नौजवान शामिल फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा एक गैर सरकारी कॉलेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए ई कार्यक्रम जुड़िया। ई मौके वे कहो कि नौजवान भारत री सब मोटी पूंजी है। नौजवाना रा धीरज, खुद माथे भरोसा और लगातार मेहनत हुई विकसित भारत बनावन रो संकल्प सांचो करियो जा सके है। प्रदेश रा नौजवाना ने खेलो इंडिया संवाद रे जरिए खेलाऊं जुड़ी योजनावां सीधा जुड़बा और विचार राखन रो मौको मिल्यो। अजमेर माए भी एक कार्यक्रम रे दौरान नौजवान खिलाड़ी वारी बात रखी।
3: मेरा नाम अर्जुन परमार है और मैंने रिसेंटली इंडिया का प्रतिनिधित्व फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में किया जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करे। और जो आज के खेल की स्थिति है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो पहले का ग्राफ है और अभी का ग्राफ है, हम उसे कह सकते हैं काफी ज्यादा ऊपर बढ़ा है। कई ज्यादा साई सेंटर खुले हैं।
4: मेरा नाम आशीष जाट है और मैं कबड्डी खेल से हूँ और पिछले साल नेशनल मैंने मेडल किया था और आज जो प्रोग्राम हुआ है काफी अच्छा प्रोग्राम था और जो भारत में मतलब खेल को लेकर जो फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड हो रही हैं उसको देखते हुए 2036 का जो ओलंपिक है उसमें डेफिनेटली भारत अच्छा करेगा और मेडल का दावेदार होगा।
0: प्रदेश माए 309 नगरीय निकाय चुनाव सारू आज अधिसूचना जारी हुए वनसा गई पर्चा दाखिल करन रो काम सारू फेंक्यो। पहला दिन 939 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्ड सारू 10 उम्मीदवार नाम पाना भरिया। डीग नगर परिषद सारू 34 और बाड़ी नगर पालिका माए 35 उम्मीदवार पर्चा भरिया। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 9 और 11 सितंबर नवेवन वाला स्थानीय निकाय चुनाव सारू पर्चा 31 अगस्त ताई दाखिल करया जा सकेला। राखी और दीतवार री छुट्टी रे कारण काल और 30 अगस्त न पर्चा दाखिल नहीं करया जा सकेला। दाखिल करी जा नाम पानारी 1 सितंबर न जांच करी जावेला। नाम 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। 4 सितंबर न चुनाव चिन्ह जारी करया जावेला। 14 सितंबर न वोटारी गिनती करी जावेला। ई बीच नगर निकाय चुनाव री गहमागहमी बदबा लागी है। पार्षद ओहदा सारू स्थानीय सक्रियता, जीत री संभावना और कार्यकर्ताओं री राय रा आधार उम्मीदवारां रा नाम माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रे अलावा कई ठोणा दूजा उम्मीदवारी मुकाबला रोमांचक बना रिया है। भारत आदिवासी पार्टी बाप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, बहुजन समाज पार्टी BSP, आम आदमी पार्टी आप, राष्ट्रीय लोकदल RLD री आप रासर वाला हलका माए सक्रियता बदवा लगी है। नई दिल्ली माई 12 और 13

सितंबर ने 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन राख्यो चावेला इनमाय ब्रिक्स रा सदस्य और भागीदार देशा रा नेता न्योतोड़ा नुमाइंदा शामिल फैला। भारत री सदारत माय फेवन वाला ई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रो मुद्दो लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। इन दौरान ब्रिक्स देशा बीच सहयोग मजबूत करण रे बारा माय विचार करियो चावेला। भारत री सदारत माय ई साल देश माय 25 शहर माय 350 मीटिंग रखी ची। भारत ब्रिक्स संगठन री शुरुआत करण वाला देशा माय शामिल है और साल 2012 2016 और 2021 माय इन री सदारत कर चुक्यो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आपसी प्रेम रो प्रतीक उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल हनुमानगढ़ माय शुरू फैला। लोक देवता गोगा जी री याद माय भरण वाला ई सालाना मेला माय मोटी तादाद माय जात्रु शामिल फै है। माणी हनुमानगढ़

0: आपसी प्रेम रो प्रतीक उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल हनुमानगढ़ में शुरू भेला। लोक देवता गोगाजी री याद में भरणवाड़ा साला ना मेला में मोटी तादाद में जात्रु शामिल भे है। माणी हनुमानगढ़ खबर नवीस बतायो के मेला सारू मोटा पैमाना में तैयारियां करी ची है।
1: गोगा मेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र और बैरिकेटिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और अपराध रोकथाम के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नोर थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने, अवैध संपत्तियां फ्रीज करने तथा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: भाई बहन रा प्रेम रो पर्व राखी काल मनायो चावेला। सावनी पुन्यू रे मौके मनाई जावन वाली राखी न ध्यान राखता थका बाजारा माए रंग बिरंगी राखियां सागे पूजन सामग्री मिठाई श्रीफल और मेवारी खरीदी करी जा रही है। राखी रे मौके सलूम्बर और श्री गंगानगर जिला समेत कई ठोणा रक्षा का वचन कार्यक्रम राखी जियो। महिलावारी हिफाजत न समर्पित इन कार्यक्रम माए महिलावारा हक और साइबर हिफाजत रे बारा माए जानकारी दीरी जी। राजसमंद जिला रा कांकरोली माए रक्षाबंधन रा सिलसिला माए पुलिस हेलमेट बांटन रो खास अभियान चलायो। श्री गंगानगर जिला री सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माए छात्रा मा नशो निकरण री राखी बांधर छात्रा ने नशो निकरण रो संकल्प दिलायो। मतदाता जागरूकता रा संदेश वाली राखियां ही लोगां ने खूब लुभा रही है। बाड़मेर जिला माए पाकिस्तान उ लाग्योड़ी सरहद माथे तैनात बीएसएफ रा जवाना माए राखी रो उमाव नजर आ रियो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े राखी री बधाई और शुभकामनावां दीनी है। वह प्रेम और विश्वास रा बंधन माय जुड़बारो संकल्प लेवन री अरज कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जनता ने राखी री बधाई और शुभकामनावां दीनी। काल सावन री पुण्यु रा दिन विश्व संस्कृत दिवस मनायो जावेला। ओ संस्कृत भाषा न बधावो देवन और इनरी समृद्ध विरासत न हेर रखन री कोशिश जुड़ियो है। संस्कृत दिवस री पहली वाली सिंजा आज रात 8 बजे प्रदेश माए आकाशवाणी रा सगला केंद्राओं राज्यपाल हरिभाव बागड़े रो शुभकामना संदेश प्रसारित करियो जावेला। जयपुर रा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा प्रोफेसर कौशलेंद्र दास कहो के संस्कृत भाषा देश री सभ्यता इतिहास रो प्रतीक है और संस्कृत दिवस भाषा साहित्य और सांस्कृतिक विरासत रो जश्न मनावे है।
2: वेदों से लेकर उपनिषदों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी से जगतगुरु शंकराचार्य के अद्वैत और जगतगुरु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत तक महाकवि कालिदास के काव्य धारा से लेकर चरक सुश्रुत की चिकित्सा विज्ञान तक संस्कृत में जीवन के हर पक्ष को शब्द काव्य और दृष्टि प्रदान की है। संस्कृत भारत की सीमाओं को लांघकर तिब्बत, चीन, जावा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अरब, यूरोप, म्यांमार, नेपाल सभी देशों में संस्कृत लिखी जा रही है, बोली जा रही है और संस्कृत के पुरातन ग्रंथों पर काम हो रहा है।
0: अरब मौसम राज्य में आवता एक सप्ताह रे दौरान बिरखा माय कमी रा आसार है। 4 सितंबर रा आरा सारे प्रदेश रा उगनी हल्का माय कठे कठे बिरखा उजू तेज वेवन री संभावना है। चौमासा री इन रुतमाए हालताए सामान्य करीब 15% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग रे मुजब डीग, भरतपुर, बीकानेर और फलौदी माय चोखो में बरसियो। अजमेर, अलवर, कोटा और जोधपुर समेत 22 जिला माय सामान्य जदकर जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर और जैसलमेर समेत 15 जिला माय सामान्य कम पानी बरसियो। राज्य रा छोटा मोटा 693 मायू 439 बंधा थोड़ा घना भरिया है जबकि 53 बंधा पूरा भर गया है। प्रदेश में वायरल बुखार रा मामला तेजी बधरिया है। जयपुर रा डॉक्टर आर के जैन बतायो कि H1N1 इन्फ्लुएंजा रा लक्षण ही सामान्य बुखार मिलता जुलता वह है। इनरा असर सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वह सके है। वह 2-3 दिन माए ठीक नी भेवन री सूरत माए मर्जी दवाई लेवन री बजाय डॉक्टर री राय लेवन री अरज की नी।
3: एक दूसरे से चलने वाली बीमारी है, इसलिए सभी को जिनको जुकाम और ये हो मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथों का इन सबको बराबर साबुन से धोना चाहिए और दूसरे लोगों से जरा डिस्टेंस बना के बातचीत करें। वैसे इससे ज्यादा डेंजरस नहीं होता,

0: हाँ, जो ऑरेंज की तो दवाई तो सिम्टोमेटिक के हिसाब से चलती है, बाकी जुकाम बुखार उनके हिसाब से इलाज चलता है, पर वैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो होती नहीं है।
1: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार 21वीं सदी रा भारत में नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय कीनो। राज्य में 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू थियो। पहला दिन 900 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल शुरू फैला। और प्रदेश खंडखर हल्का माए कालू एक सप्ताह साई बिरखा मंदी पड़ बारा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम किसानवाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगड़ा श्रोतावान है, सगड़ा काश्तकार भयान है। आशाधा भाई का घना घना राम राम, और राजू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: राम राम आशा बहन, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगड़ा श्रोताओं राजू चौधरी रो घनो घनो राम राम सा।
6: और देखो सर, रामा श्यामा की साथ साथ ही अब आज का किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप या कर ला कि अबार को जो टाइम छे वो टाइम कमाईने अगर काश्तकार भाया वह तो देखो रोज ही आपका खेत में जाओ छे, निरीक्षण भी करे छे और करबा का सारा ही काम कर लेवे छे। पर अबार को जो टाइम छे वह यह छे कि थोड़ी सी और सावचेती राखता हुआ खेता में काम करे, ज्या की फसल ने निरीक्षण करता हुआ ध्यान रखे कि कोई कीड़ा बीमारी लाग रही है ई टाइम, तो उसे अगर फसल ने बचा देवे तो वहां को उत्पादन और भी ज्यादा सुरक्षित हो सके छे।
7: बिल्कुल सा, और देखो आपने जो फसल है जो पकाओ अवधि की ओर चल रही है और कुछ में देखो फूल अवस्था है, फली अवस्था है, तो जो आपने दलहनी फसल है या और आपने जो मूंगफली की फसल है या सोयाबीन की है,
6: सोयाबीन की जो फसल छे देखो अबार उमे भी संरक्षण पर ध्यान देनो घणो जरूरी छे। ज्या के आपा बात करा अबार मक्का की फसल में बुट्टा बन रहे छे, दाणा आ भी रहे छे, आप और में बाजार से लेर खा भी रहे छे, पर कई जगह आप देखो छो कि वहां बुट्टा के अंदर कोई लटसी छे, दाणो खराब हो रहे छे, तो वह चीज पूरी फसल ने प्रभावित करे छे जिससे काश्तकार भाइयों को उत्पादन कम होवे छे। तो ध्यान दे वाली बात यही छे कि आपा ई टाइम जो रासायनिक छिड़काव बुरकाव करा छा फसल सुरक्षा के लिए उन्हें सावचेती से करा,
7: और नुकसान के साथ में फसल की जो गुणवत्ता है बिन भी खराब करे थे, तो देखो अपना जो फसल है सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त हो है, तो आपने समय रहता वहाँ फसल में निरीक्षण कर और अपना जो समझ में आ रही है तो भी साहब नहीं तो नजदीकी कृषि कार्यालय में कृषि जो पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, बिन दिखार भी आपने जो बीमारी है कीड़ो है बिन को संरक्षण कार्य कर अपनी फसल

0: रोगी राग और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक अपन उत्पादन प्राप्त करना चाहिए।
1: राजू भाई, ये टाइम आपने जो फलिया बाजार में आ रही है उनमें भी आप देखा कि कई बार तो बहुत ही हरी हरी और बहुत ही बढ़िया ताजा ताजा रहे हो छे, और ये टाइम पूरी पकबा की अवस्था में छे। तो काश्तकार भाई यह भी ध्यान रखे कि जो पूरी तरह से पकबा की अवस्था में छे फलिया वाने तोड़ लेवे, क्योंकि ज्यादा पकबा से फलिया को दाणो निकल जावे छे और खेत में ही बिखर जावे छे, जो कि मोटो आर्थिक नुकसान काश्तकार भाई ने हो सके छे।
0: बिल्कुल सर, देखो मौसम परिवर्तन की वजह में या समस्या हो है तो वो तापमान ज्यादा या कम है, और उसको फसल के अंदर आपने जो बीज में यान की वैरायटी भी आ जाओ जो पड़ी है बस जल्दी पक जाओ, तो जल्दी पक जाओ तो बाद धूप कमाइन चिटक कर वहां का दाना बिखर जाओ। तो इसके लिए आपन देखो अगर आवश्यक है तो आप और सुविधा हो सके तो आप देखो फसल की जो पड़ी है वन तोड़ सका, नहीं तो एक साथ अगर आप कटाई करवो चाहवा तो एक साथ जब फसल पूरी पक जावे तो एक साथ कटाई कर और बिन भंडार गृह पर ला और बिन थ्रेसिंग करार बीज ना निकाल लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो देखो सर यही छोटी छोटी बातें छे जहाँ को अगर ध्यान में रखे ना तो आप अपना काश्तकार भाया आपकी मेहनत को पूरा फायदो ले सके छे। और करनो इतो ही छे कि आपने समय ने ध्यान में रखता हुआ मौसम ने ध्यान में रखता हुआ ये सारा काम कर लेना चाहिए। और जब बात समय की आवे छे तो राजू भाई अब समय हो रहे छे किसान वाणी कार्यक्रम में जो आप विषय विशेषज्ञ ने बुलावा छा और अपना भाई लोगों के लिए अपना काश्तकार भाइयों के लिए नई नई और ज्ञानवर्धक जो जानकारी वहां तक पहुंचावा छा उनको। तो आपने अनीता बहन भी स्टूडियो में आ चुके छे, विषय विशेषज्ञ ने साथ लिया छे, तो आओ सा सगड़ा ही मिलर सुना वहां की या बातचीत।
2: किसान वाणी सुनबा वाला सभी किसान भाइयों ने अनीता की घनी घनी राम राम सा। किसान वाणी में हमें आपके लिए नई नई जानकारियां ले रहा चाह ई कड़ी में ही आज मैं आपके लिए ले रहा चाह क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं की पहचान और वहां का सुधार का उपाय। ई विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने कार्यक्रम में पधारा छे डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, आप मृदा वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में आप पदस्थापित छे। आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे श्याम सुंदर जी। राम राम सा।
3: राम राम मैडम।
2: तो जी है कि आज आप बात करा ला क्षारीय और लवणीय मृदाओं की पहचान और वहां का सुधार का उपाय का बारे में। तो सबसे पहली डॉक्टर श्याम सुंदर जी आपसे मैं यही जानवो चावला भाई क्षारीय और लवणीय माटी काई होवे छे ई का बारे में किसान भाई ने बताओ सा।
3: मृदा एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, आदमी उसका निर्माण नहीं कर सकता
2: जी।
3: ये प्राकृतिक स्रोत है और एक सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से चाहे वो आदमी की हो चाहे कोई पॉलिसी मेटर हो हम उसको एक ही सीजन में नष्ट कर देते हैं
2: जी।
3: और जैसे जनसंख्या बढ़ती है इस तरह इसको न तो फैक्ट्री में बढ़ा सकते हैं न रबड़ की तरह खींच सकते हैं, तो जैसी भी मृदा जो है जैसी उसमें ही हमको प्रबंधन करके हमारी जो बढ़ती जनसंख्या उसको उसमें भोजन उपलब्ध कराना है। तो उसी क्रम में हम क्षारीय मृदाओं के प्रबंधन के बारे में और उनके उपाय और उनकी पहचान के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे
2: जी।
3: जहां तक लवणीय मृदाओं की बात है, लवणीय मृदाएं वो मृदाएं होती है जिनमें घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और वो पौधे की बढ़वार के साथ साथ उनके उत्पादन पर भी प्रभाव डालती है। जैसे आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे किशमिश होता है और किशमिश को अगर आप चाशनी के घोल में डाल दो तो वो सिकुड़ जाता है
2: जी।
3: तो इसी तरह जब मृदा में लवण मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पानी मृदा से पौधे की तरफ जाने की बजाय पौधे से मृदा की तरफ आ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है और उसका उत्पादन खत्म हो जाता है।
2: अच्छा,
3: तो ये लवणीय मृदाएं। दूसरी क्षारीय होती है, इनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उसकी वजह से भौतिक संरचना होती है वो नष्ट हो जाती है और उसमें न तो पानी का संचार हो पाता है न वायु का हो पाता है, तो उनको क्षारीय मृदाएं कहते हैं, वो भी फसल के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
2: तो सर यह जानवो चाहला भाई क्षारीय मृदा में जी आप बताया भाई सोडियम की ज्यादा प्रभाव है जावे तो इको फसल पर काय प्रभाव पड़े।
3: क्षारीय मृदाओं में सोडियम की बहुतायत होते ही उसकी जो भौतिक संरचना होती है वो खराब हो जाती है, वो नष्ट भी हो जाती है और उसके कारण पानी का जमाव जमीन पर हो जाता है, पानी अंदर की तरफ जा नहीं पाता है
2: जी।
3: न तो उसमें वायु का संचार हो पाता है न पानी का उसमें संचार हो पाता है, उसकी वजह से जो उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं
2: जी
3: उनको हवा नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से नष्ट हो जाते हैं और जो सारा जो प्रक्रियाएं जो पोषक तत्व प्रबंधन की होती है जो उसको उपलब्ध पौधे के लिए जो माइक्रोब्स करते हैं सूक्ष्म जीव के वो सभी बंद हो जाती है और सारी उसकी फसलों की पैदावार कम हो जाती है और कई बार तो खत्म से हो जाती है
2: जी।
3: तो ये उनका प्रभाव पड़ता है
2: जी। पर बात यह आवश्यक है कि भाई अपना किसान भाई मिट्टी की क्या पहचान करे कि

0: वहाँ क्षारीय माटी छे या लवणीय माटी छे?
1: लवणीय और क्षारीय मृदाओं के यहाँ तो पहचान का प्रश्न है। इसका सबसे विश्वसनीय तरीका तो मृदा परीक्षण ही है। फिर भी किसान चाहे तो लवणीय मृदाओं की पहचान के लिए सफेद साग एक लेयर जम जाती है, परत जम जाती खेत में
0: जी,
1: साथ में बीजों का उसमें बोते हैं तो उनका अंकुरण बहुत कम हो पाता है, साथ में उनकी वृद्धि भी कम हो पाती है। और जब पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के किनारे वो सूख जाते हैं, बुलत झुलसा टाइप हो जाते हैं या सूख जाते हैं, और फसलों का भी असमान ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इस तरह हम उसको पहचान कर सकते हैं। लेकिन विश्वसनीय तरीका तो मृदा का परीक्षण ही है। विश्वसनीय लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में उसका टेस्ट कराएं और वही उसको आपको पहचान करके उसके बारे में बताएं।
0: तो सर आप जी आप बात कर रहे हैं चाहे क्षारीय और लवणीय दवा की पहचान और सुधार का उपाय के बारे में। तो अब बात यह आवश्यक है कि भाई जी किसान भाई की अगर क्षारीय भूमि छे तो भी परेशानी छे, लवणीय भूमि छे तो भी परेशानी छे, तो ऐसी भूमि की सुधार के लिए सबसे पहले किसान भाई काय उपाय अपना सके छे?
1: इसमें जब परीक्षण के लिए जब मृदा का नमूना हम लेके जाते हैं तो लवणीय मृदाओं के कुछ अलग पैरामीटर है जो उनको उसमें परिभाषित करते हैं और क्षारीय मृदाओं के अलग है। तो लवणीय मृदाओं में क्या होता है कि जो सोल्यूबल जो घुलनशील लवण होते हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो उनको प्रबंधन के लिए उसमें किसी सुधारक की जरूरत नहीं होती है। उसको जल निकास से या अच्छी जो गुणवत्ता का पानी है उसको देके जो फसल का जो रूट जोन होता है, जड़ का क्षेत्र होता है, उससे नीचे उनको परकोलेट कर देते हैं, यानी उनको नीचे अंदर समाहित कर देते हैं, तो उससे उसका प्रबंधन हो जाता है
0: जी।
1: ये तो हम लवणीय मृदा की बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर पानी रुकता है तो उसका जो नालियां बना के उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि लवण की मात्रा उसमें निकल जाए और भविष्य में भी उसमें जमा नहीं हो
0: जी।
1: जहां तक क्षारीय मृदाओं की बात है तो उसमें जो सोडियम की अधिक मात्रा होती है उसको प्रबंधन के लिए उसमें जिप्सम उसमें डालते हैं। तो जिप्सम क्या करता है कि जो सोडियम उसमें अधिकता है उसको कम करके उसका सुधार कर देता है। साथ में जिप्सम एक सल्फर भी तत्व होता है उसको भी उपलब्ध कराता है जो उसकी संरचना सुधरती है। संरचना के साथ साथ वो सुधरेगी तो पानी का जमाव भी नहीं होगा और अंदर उसमें जिसे चल जाएगा पानी और उसका सब प्रबंधन भी हो जाएगा। तो ये उस सुधार की बात है
0: जी।
1: इसके साथ में हम कुछ दूसरे जो अपने परंपरागत स्रोत है उनको काम में ले सकते हैं, जैसे FYM है जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, यानी किसान अपने खेत पे ही तैयार करता है, देसी खाद जिसको बोलते हैं गोबरी खाद, उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा उपाय है हरी खाद का। हरी खाद में क्या करते हैं कि जैसे सनई ढेंचा गुआर या कोई और कोई मतलब बीज पत्ते द्विबीज पत्री पौधे हैं उनको बरसात के टाइम पर कुछ अधिक बीज की मात्रा डाल के 30 से 50 किलो पर हेक्टर के हिसाब से उसमें बुआई करके और जब वो फूल आने से जस्ट पहले थोड़ा सा पहले उनको जमीन में पलट देते हैं। ये बरसात का सीजन बरसात हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो पानी देके उनको सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे उसका pH भी कम आता है, सोडियम की मात्रा भी सुधरती है और उसकी भौतिक दशा भी अच्छी हो जाती है और अंकुरण भी अच्छा होगा और पानी का जो जमाव होता था क्षारीय मृदा वो भी नहीं होगा। तो ये आजकल तो किसान थोड़ा भूल गया है इसको, लेकिन अगर इसको साल दो साल में करता रहे तो निश्चित रूप से उसका सुधार हो जाएगा और अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा
0: जी। आप बताया क्षारीय मिट्टी में जिप्सम डालवा में सुधार हो जाए तो कहीं लवणीय माटी में भी जिप्सम डालवो जरूरी है?
1: लवणीय मिट्टी में जिप्सम का डालना जरूरी नहीं होता है, ये समस्या के रूप और घुलनशील लवणों के मात्रा पर निर्भर करता है। पर ज्यादातर लवणीय मृदाओं में जल निकास से उसका प्रबंधन हो जाता है
0: जी।
1: पर जल निकास करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो जल है वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पहले से लवणीय है और उससे आप करोगे तो आपको सुधारने के बजाय वो ज्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अच्छी गुणवत्ता का पानी ले और उसमें भर दें, उसमें अपने सीड बेड बना के क्यारा बना के, और वो पानी उसमें धीरे धीरे जब जमीन के साथ जाएगा तो साथ में लवण को घुलित करके और जो रूट जोन है जो जड़ क्षेत्र है फसल का उसके नीचे ले जाएगा और वहां से साल्ट जैसे जाएंगे लवण जैसे जाएंगे और फिर उसका फसल का प्रबंधन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से लवणीय भूमि का प्रबंधन किया जाता है। आपके बारले है जो बोलते हैं, गेहूं है, सरसों है, कपास है, कुछ चारे की फसलें हैं, इस तरह के रिजगा ले तो इस तरह की फसल लेगा तो इन पे थोड़ी लवणीयता और क्षारीयता का प्रभाव कम आता है। इसके साथ में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो क्षेत्र वाइज पहले से रिकमेंडेड है, तो इनमें भी वही लें
0: जी,
1: किसमें लें ताकि उसको ज्यादा फायदा हो। सब्जी की बात करें तो एक जोबनेर से एक वैरायटी निकली हुई है, ज्वाला जोबनेर पालक की, वो बहुत अच्छी वैरायटी है, कई फार्मर वहां करते भी है और उनका अच्छा प्रोडक्शन होता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लवणा के अधिक मात्रा में भी अच्छा

0: पैदावार देती है
1: जी।
0: उसके साथ ही अगर हम फल की बात करें तो अनार एक ऐसा है कि वो काफी बहुत अधिक लवणताओं को भी वो सहन कर लेता है, तो अनार को बो सकते हैं। साथ में आपका बेल पत्र है, साथ में आपका ये आंवला है, आपका करौंदा है, इस तरह के जो फल हैं ये इस तरह की मृदा में हो जाते हैं और किसान को मतलब अच्छा उपज भी देते हैं और इनमें ज्यादा लागत भी नहीं आती।
1: पर अपने किसान भाई क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी किस्मा को ध्यान रखना
0: बिल्कुल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया गेहूं लेना, तो गेहूं में भी दुनिया भरी किस्म है, लेकिन आपके क्षेत्र के लिए कौन सी रिकमेंडेड है
1: जी जी,
0: तो पहले से वैज्ञानिकों की है तो आप वो करोगे तो फायदा ज्यादा होगा आपको। इसी तरह जौ की भी है, कपास की भी है, चारे की भी है, तो उस तरह का विशेषज्ञ से बात करके या जिस तरह कार्यक्रम आते रहते हैं उनके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। तो सर अब आगे बात यह करा भाई, कहीं फसल चक्र अपना किसान भाई अगर अपनावे तो कहीं असी मृदावा में यो भी लाभदायक रह सके वहाँ की फसल के लिए।
0: जी हाँ, फसल चक्र ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान को फसल को बदल बदल कर बोना पड़ता है। जैसे एक बीज पत्र गेहूं जैसे बो दिया तो अगली बार उसको द्विबीज पत्र बोलना चाहिए जो ताकि कि वो जो अलग अलग परत है भूमि की उससे वो पोषक तत्व प्राप्त कर ले। और दूसरा क्या होता है कि जैसे गेहूं है ये एक बीज पत्री है तो इतना ये न्यूट्रिशन या उसमें ऐड नहीं करते जितना लेग्यूमिनस क्रॉप जिसको बोलते हैं द्विबीज पत्री है, चना है, अरहर है, मूंग है, ये उसमें ज्यादा नाइट्रोजन और अन्य तत्व भी उसमें ऐड करती है। तो फसल चक्र का फायदा ये होता है कि बदल बदल कर बोने से उसकी उर्वरकता बनी रहती है और इस तरह की मृदाओं में तो विशेष तौर से फार्मर को करना ही चाहिए और वो अधिक फायदा उसे उठा सकता है
1: जी। देखो सा अगर कोई भी फसल बोवे तो उमा उर्वरक की जरूरत तो पड़े ही छे, तो असी मृदावा में उर्वरका को प्रयोग अपना किसान भाई क्या करे।
0: किसान भाई सबसे पहले मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरक की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ठीक है सामने वाला दो कट्टे डाल रहा है तो मैं चार कट्टे डालूं, ये गलत प्रणाली है, उससे आपको आर्थिक रूप से नुकसान होता है और कोई विशेष पैदावार आपकी बढ़ती। साथ में मृदा परीक्षण की रिपोर्ट का जरूर ध्यान रखें, संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूर अपनाएं, उससे क्या है कि आपकी लागत भी कम होगी और आपका ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा और आपकी अच्छी गुणवत्ता की पैदावार होगी।
1: ठीक सर जी, अपना किसान भाई अगर वहाँ की साधारण भूमि है तो उनमें खाद बीज को तो वहाँ उन हिसाब से ही काम में लेनी चाहिए, पर अगर वहाँ की भूमि क्षारीय है या लवणीय है तो असी भूमि में बीज बोती टाइम अपना जो किसान भाई है वहाँ की भूमि ई तरीका की है तो वहाँ कसी कसी बातों को और कसी सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, लवणीय भूमि में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो अंकुरण की रहती है, तो ऐसी स्थिति में तो किसान को सतर्क हो जाना चाहिए और हमेशा प्रमाणित बीज है अच्छी दुकान से और अच्छी कंपनी के ही लेनी चाहिए। और मैं तो साथ में कहूंगा कि कई बार किसान को वो दुकानदार बावड़ा बना देता है, बेवकूफ बना देता है और उसको उसका बिल नहीं देता है, तो वो जब पैसे हम पूरे दे रहे हैं तो बिल प्राप्त करे, तो बिल प्राप्त करने के बाद वो आपसे किसी तरह की वो धोखाबाजी नहीं करेगा और आपको प्रमाणित बीज मिलेगा, तो उससे उसका अंकुरण की क्षमता वो बढ़ेगी और आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। साथ में बुआई के समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये क्षारीय और लवणीय मृदा ऐसी है कि समय निकल जाने के बाद उसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लवण ऊपर आ जाता है, तो अंकुरण में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, तो उसकी संख्या जो संख्या है पौधों की वो कम हो जाती है। इसलिए समय का ध्यान रखें, पहले से तैयारी कर लें, बीज ला के खेत को तैयार कर लें, कोई उपचार करना तो उसको पहले ला के रख लें, तो समय का विशेष ध्यान रखें और बस प्रमाणित बीज प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा।
1: जहाँ किसान भाई का खेत क्षारीय या लवणीय है तो कहीं वहाँ का खेत में समतल राखो भी जरूरी है, उनको भी कोई पड़े।
0: बिल्कुल साहब, एक ऐसा प्रश्न है जो ये वैसे तो किसान को खुद को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके जानकारी लिए बता दूं कि अगर समतल खेत है तो पानी का जमाव नहीं होगा उसमें।
1: अच्छा।
0: और लवणीय जो मृदाएं बनती है उनमें पानी जमा होने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका खेत ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं पानी भरेगा नहीं, कहीं भर जाएगा और फिर वो जब सूखेगा ना लंबे समय के बाद तो वहीं वो लवण छोड़ देगा और पानी उड़ जाएगा, तो दोबारा फिर आपकी भूमि क्षारीय और लवणीय बन जाएगी। तो कोशिश ये करें कि समतल होना चाहिए भूमि और समतल भूमि का प्रयोग करें।
1: खरपतवार नियंत्रण को काय महत्व जी कमा
0: ऐसा है जी, ये सब जानते हैं कि खरपतवार अपनी जीवनी जीवन बचाने के लिए जो फसल होती है उससे वो प्रतिस्पर्धा करता है, चाहे वो पोषक तत्व के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे खाद के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो। तो जब प्राइमरी स्टेज में यानी कि जब अंकुरण शुरू होने लगे उस समय ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो मृदाएं इस तरह की होती है उसमें जो फसल होती है चाहे किसी भी तरह की फसल हो वो तनाव में वैसे ही रहती है, चाहे वो पोषक तत्व के लिए हो चाहे वो पानी के लिए हो, तो अगर उनके साथ इनका कंपटीशन रहेगा खरपतवारों का तो निश्चित रूप से उनको पोषक तत्व कम मिलेंगे और पैदावार आपको कम मिलेगी। तो खरपतवार का ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखते हुए प्रारंभ में ही उनको नष्ट कर देना चाहिए
1: जी। हरी खाद को क्षारीय मृदावा सुधार में भी कई महत्व है।
0: बिल्कुल, हरी खाद का मैंने जैसे बताया कि हरी खाद एक ऐसी खाद

0: है जो कम खर्चे में बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, जिससे आपको मैं उदाहरण दूंगा, ढेंचा जैसे सामान्य है, गंवार है, आपको और भी लेगुमिनस फसल वो भी ले सकते हैं, लेकिन बहुतायत में तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को ढेंचा या गंवार ले, वो थोड़ी ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करती है। तो बरसात में आपकी पहले बरसात होते ही उसकी बुआई कर दे और थोड़ी उसकी बीज की मात्रा थोड़ी सी 10% 20% ज्यादा रखे, ये जनरली 30 से 50 किलो तक रखते हैं एक हेक्टेयर के लिए, और उसको बुआई कर दें। और बीज की मात्रा ज्यादा रखने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा फुलेज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति हो, ज्यादा से ज्यादा पौधे हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे उसमें पोषक तत्व उपलब्ध करा सके। जैसे ही फसल बढ़े और फूल आने से पहले नरम नरम हो, उनको पलटने वाले हल से पलट दे।
1: अच्छा।
0: ताकि वो जमीन में दब जाए और उनका सड़ाव पूर्ण रूप से हो जाए, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बरसात नहीं होती है तो उसमें दीमक लग जाती है।
1: अच्छा।
0: तो या तो पानी दे, बरसात हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो पानी दे दे, ताकि उसका पूर्ण उसका सड़न हो जाए और पौधों को उसकी जो अच्छी खाद है वो मिल जाए। वो क्या है कि पोषक तत्व तो प्रदान करती है, साथ में इसका पीएच भी कम करती है इस तरह की मृदाओं का, और सोडियम का मात्रा को भी कम करती है। वो कुछ जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, सड़न होता है, उस समय विभिन्न प्रकार के वो एसिड अम्ल है ना, वो सीक्रेट करती है, तो वो सब पीएच को और बाकी जो हानिकारक पैरामीटर है उनको कम करती है, जैसे आपका सोडियम है, आपका पीएच है, ईसी है, इनको सब कम करके और न्यूट्रल अवस्था में ले आती है, उदासीन अवस्था में ले आती है, और फसल को अच्छा पोषक तत्व प्रदान करती है और भूमि आपकी उपजाऊ बन जाती है।
1: कुछ छोटा छोटा उपाय चाहे जो करके अपना किसान भाई, जहाँ किसान भाइयों की भूमि क्षारीय और लवणीय छे, वहाँ की मृदावा की वे पहचान कर सके जे, और छोटा छोटा उपाय अपना भूमि में सुधार करके चौकी उपज पा सके जे, और जब चौकी उपज होली तो उनको मुनाफो भी चौको होलो। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, मृदा वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में आप पदस्थापित छो, आप कार्यक्रम में पधार्या, इके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम साहब।
2: अनिता जी ने बहुत ही चौकी जानकारी दवाई और जानकारी दिया अपने कृषि विशेषज्ञ श्याम सुंदर जी शर्मा, जो को विषय रियो सारी और लवणीय मृदा को प्रबंधन के प्रकार करा और आपनों जो को फसल उत्पादन है बिन के हिसाब वहां बढ़ा सका।
3: और राजू भाई, अब कार्यक्रम में टाइम छे मनोरंजन को भी, तो मनोरंजन भी काश्तकार भाइयों को भी करावला, विषय विशेषज्ञ ने भी गीत सुनावला, पर छोटा सा अंतराल के बाद।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच
4: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: राजू भाई
1: हाँ
0: देखो सर गीत आपा भी सुने सगड़ा काश्तकार भाया भी सुने और विषय विशेषज्ञ भी सुने और उम्मीद छे कि यो गीत सबने ही बहुत चोखो भी लागे होलो और आपने चोखो लागे को नहीं या बताओ सर
1: बहुत चोखो लागे सर।
0: अब देखो सर चोखो लागे तो चोखो से एक काम आपने और करनी छे कि अबार को जी को जो मौसम छे जो कि अपना काश्तकार भाया ने फसल का उत्पादन ने सीधो सीधो प्रभावित करे छे थोड़ी सी जानकारी वा भी दे दो सर।
1: बिल्कुल सर, देखो आप पूरा राजस्थान प्रदेश की बात करा तो देखो काफी जिला में देखो बरसात हो रही है, ज्यादा भी हो रही है कम भी हो रही है। तो देखो ज्यादा हो रही है, देखो जल जो पानी है बरसात है तो भी सावधानी भी रखनी चाहिए और कड़े है देखो अपना कम हो रही है तो भी देखो फसलों की मांग के अनुसार बम सिंचाई भी करनी चाहिए। तो मौसम की बात करें आप आज का सामान्य देखो तापमान रही हो अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम रही हो 26 डिग्री सेल्सियस और देखो बादल वाला मौसम बने रहे सी और कड़े कड़े बूंदाबांदी और हल्की बरसात की भी संभावना बताई गई।
0: और काश्तकार भाया अभी मौसम की ताजा जानकारी के साथ ही स्टूडियो की घड़ी अब कह रही है कि आज कुछ को कार्यक्रम चे किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे हैं तो श्रोतावा दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और राजू ने
0: चालार करा
1: राम राम, राम, राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज में फिल्म कल हो ना हो से के इस गीत के साथ। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है शंकर एहसान का।

लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आन मिलो सजना से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म हमारा दिल आपके पास है से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है संजीव दर्शन का।

0: रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत दिवस पर माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागड़े का संदेश।
1: नमस्कार, आप सभी को श्रावणी पूर्णिमा, संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध या परिमार्जित। संस्कृत भाषा नहीं, भारत की संस्कृति है। विश्व की प्रचलितम भाषाओं में संस्कृत अग्रणी भाषा रही है। हिंदी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं का उद्गम और विकास संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत से देश की दूसरी सभी भाषाओं को अपनी शब्द संपदा से निरंतर संस्कारित किया है। यह श्रावण मास है, श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन को ही प्रतिवर्ष हमारे यहाँ विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन काल में इसी पावन तिथि से गुरुकुलों में वेद अध्ययन और नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होता था। इसे श्रावणी उपाकर्म या ऋषि पर्व भी कहा जाता है। श्रावण और संस्कृत का यह नाता ऐतिहासिक ही नहीं, भारत की संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ा है। श्रावण में वर्षा होती है तो वह माना जाता है कि आकाश से अमृत झर रहा है। यह वह समय होता है कि जब वसुंधरा हरी साड़ी पहनकर 3 दिन तक गौरी के रूप में अनेक परिवारों में 3 दिन तक निवास करती हैं। संस्कृत और श्रावण भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हमारी ज्ञान परंपरा की अद्भुत दृष्टि है। हमारे सभी प्राचीन गौरव ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण आदि संस्कृत में ही लिखे गए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि संस्कृत हमारे देश की एक तरह से प्राण भाषा है। यही वो भाषा है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुंधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया है। यही वो भाषा है कि जिसमें अपने नहीं सबके कल्याण सुख की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया गया है। आधुनिक सूचना और संचार विज्ञान के अंतर्गत एक भाषा को वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक उपयोगी माना है। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, पूर्णतया विज्ञान है। सुनने से अनंत तक ज्ञान हमें संस्कृत भाषा से ही प्राप्त हुआ है। राजस्थान में वर्ष 1958 में संस्कृत शिक्षा का पृथक निदेशालय स्थापित हुआ। गांव-गांव में संस्कृत विद्यालय इसीलिए खोले जा रहे हैं कि हमारी यह देववाणी जनवाणी बने। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ज्ञान की जिस भारतीय परंपरा पर विशेष ज्ञान दिया गया है उसका मूल संस्कृत ही है। आइए हम भारतीय संस्कृति से जुड़ी संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए कार्य करें। इसके साथ ही हम वर्षा जल संरक्षण का संकल्प भी ले, पानी का उपयोग सोच समझ कर करें। मैं सदा कहता हूँ कि पानी की बचत ही उसका उत्पादन है। इसके साथ ही आप सभी से एक और अनुरोध है कि हम नशा मुक्त राजस्थान के लिए भी संकल्पबद्ध हो। गांव शहरों में मादक पदार्थ के सेवन से बचने की

0: पिंकी प्रीति की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत है अनु मलिक का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिबाबू किशन राव बनार्डे का संदेश आकाशवाणी जयपुर से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जयपुर अजमेर केंद्र है

0: प्रति जागरूकता के फैलने के साथ हमें नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। समाज नशा मुक्त होगा तभी भारत तेजी से विकसित की ओर अग्रसर हो सकेगा। भारत की नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के संस्कृत से जुड़ी है। संस्कृत भाषा हमारी ज्ञान परंपरा की बड़ी स्रोत है, इसलिए इस भाषा से आइए हम जन जन को जोड़े। संस्कृत दिवस की एक बार पुनः प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन की भी सबको मेरी ओर से स्वस्ति कामना है। जय भारत, जय राजस्थान।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत दिवस पर माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े का संदेश। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया गया।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनवाते हैं आपको अमी मिश्रा की आवाज में फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। गीतकार हैं कुणाल बर्मानी और संगीत है अमी मिश्रा का।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे हैं फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत। गीतकार है नीरज और संगीत है एसडी बर्मन का। और इसी के साथ

फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, माफ कीजिएगा, आइए सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जुम्मे खां व साथियों की आवाज में गाए हुए लोकगीत।

बना जी, इस दुनिया में अपनी अपनी चतुराई सभी दिखाते हैं और अपनी चतुराई से दूसरे को उल्लू बना देते हैं। वो क्या है? एक लोक गीत है, इस दुनिया की किस्सा के रूप में है। कैसे सुने? अरे नायक मारन को

0: क्या होता है बनाजी?
1: क्या होता है साहब?
0: चारों ने सलाह करी कि ये मिठाई तो खानी है, मिठाई को देख करके कभी शहर में गए नहीं, अब मिठाई देख करके मन तो कर गया। अब क्या होता है?
1: क्या होता है
0: भाई? चारों ने फिर सलाह बनाई, बढ़िया के धोरे आए हैं। लाला जी

0: कि ये बात भी सही है कि भाई उनको या तो घर बंद कर ला के कर दो या उनको वहां से भगा दो। सलाह दी तो साहब वो वहां से चल दिया, वो साहब वो चारों दुकान में बंद हो रहे हैं, वो नीचे अपनी कैसे कैसे बातें बतला रहे हैं, दुकान में बंद हुए हुए हैं।
1: क्या कह रहे हैं
0: भाई? चारों दुकान में बंद हुआ तो मन में अपने घबराए,
1: दुकान में

सेठ जी घबराए पड़ो, घर वाला ने पूछी भी कैसे क्या बात हो गई, कैसे घबरा रहे हो। सेठ जी ने कही वहां में तो कोई मिठाई में जहर मिलो और कोई मर गो भीतर। तो कैसे कह रहे घर वाला, अरे वो तो बात थी 250 की और अब है काम हजार।

0: हमने कही थी, घरवाला ने समझाया, वो बात तो 250 की, अब है काम हजारन को, अब तो उनको ऐसे करो तुम अगर कोई मर गो तो चुपचाप ले जाए तो ठीक है, उन्हें रिपोर्ट कर दी तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो कैसे कर रहे साहब?
1: कैसे कर रहे साहब?
0: भाई राम राम जी करे

सेठ जी मन अपने घबरावे है। भाई अल्लाह अल्लाह करे सेठ जी मन अपने घबरावे है। अब तो भैया चुपके हो जाओ हाथ जोड़ समझावे है। अपने मुर्दा उठा के भैया अपने घर को ले जाओ। कफन काटी भी और दिवा दूं पैसा भी मत।

आंधा ने उजमा के देखा कि यार दोस्त ने उजमा के तो देखिए कैसे भाईला है भाई। आंधा ने तो दर पकड़ ली आंख नहीं अपनी खोले, और वो एक जगह ते धाप लिए पण उनसू मुसू ना बोले। तीनों ने फिर सोच करो के सात माछ मर गो आंधा, और या का हिस्सा और बट

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप

0: करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
8: किसान भाई सोलर पंप लगाएं, बिना डीजल बिना बिजली अपना पंप चलाएं। सोलर पंप योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसमें किसान अपने यहाँ सूर्य की रोशनी से पानी का 7.5 हॉर्स पावर तक का पंप चला सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार अनुदान दे रही है। जिन कृषकों के पास सिंचाई का स्रोत है पर कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें 3 से 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र पर 60% अनुदान दे है। आत्मा योजना अलवर द्वारा जनहित में जारी। उन्नत कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं किसान भाई, तो राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठाएं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने पर अधिकतम 1,00,000 रुपए, रोटावेटर खरीदने पर अधिकतम 50,400 रुपए और सीड ड्रिल एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन पर अधिकतम 28,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा कृषक हित में जारी।

0: पन्ना जी, ये सब काया के ऊपर का भजन है, इस शरीर के ऊपर शरीर का वर्णन किया है, तो इसमें क्या कहा है?
1: क्या कहा साहब?
0: अरे गोरी दे दे हिल की रुवेगी, अर जावेगी

जी, जो सुख चाहे अपने पिया को तो हो संतन की चेली। ज्ञान लो, संतों के पास बैठ कर ज्ञान लो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर

0: या लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: पन्ना जी,
1: एक और है काया के ऊपर ही और मन के ऊपर है। जो ये मन है ना, ये अनेक तरह का है। कैसे कैसा है भाई? मन लोभी, मन लालची, तो मन चंचल, मन चोर। बहुत कवि कहते हैं भाई, मन लोभी, मन लालची, तो मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालियो, मन पलक पलक में और।
2: क्या
1: तो इस मन के ऊपर क्या कहा है महाराज जी? अर मनवा ना बिचारी रे,

जुमे खां और साथियों की आवाज में गाए हुए इन्हीं लोक संगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 और 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-9 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-0-9-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश

0: के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: Discussions are expected.
3: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जपारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
4: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
5: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
6: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में।

0: एस्टेब्लिश होने में ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
1: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े। ये

0: 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in
4: Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. डिफेंस मिनिस्टर

0: लोगों ने कहा शैलेंद्र मौसिकार सचिन देव बर्मन मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म काला बाजार का ये गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: शैलेंद्र का लिखा गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म जानवर से दर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस। इस फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: अनमोल खजाना।
1: आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: हमारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी।

बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाबर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका

वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गंग

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

0: यहाँ
1: सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म

आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुन

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

गया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। भीगे मौसम के शरारे, भीगी भीगी सी हवाएं, वो रात का पुनूर मंजर, वो पत्तों से शबनम का बरसना, रंग चढ़ता है मोहब्बत का उजालों की तरह, एक हलचल सिमझती है ख्यालों की तरह, सबा ने बादलों का घूंघट उठाया, कलियां चटकी, मौसम गुल ने ली अंगड़ाई, दिल धड़का किया कि फिजाएं कर चली इकरार मोहब्बत, कि तुम्हारी याद सरे शाम जब भी आती है, मेरे सुकून मेरी तन्हाइयों को जगाती है।

शम मसरे शाम साहिल पे कोई जला जाता है, अब कहां रोके से रुकता है ये दिल। ये तो सच है कि जमाने बाद इन राहों से गुजरे हैं हम, बात ये भी सच है कि मोहब्बत की गली में पांव रखने की इजाजत नहीं, और ये भी है कि इस बात का चर्चा न किया जाए। न गवार गुजरेगी इश्क मोहब्बत की दास्तान जमाने को, और ये भी मुमकिन है कि ये फसाना मशहूर हो जाए।

बारिशों में भीगती फजाएं, ये बादलों में बूंदों की तड़प, ऐसा लगता है कि शोलों से उठती हैं चिंगारियां, मदहोशियों के साए, मोहब्बत का जुनून और बस एक निगाह, उनको देखने की तड़प। क्या कहूँ, न दिल ही कसूरवार है, न रातों की अंगड़ाइयां, ये इश्क की सदाएं हैं, बादलों से मोहब्बत बन के बरस जाती हैं।

0: प्रस्तुति से आप सुन रहे हैं छाया गीत। किसी रात आ जाएं वो, ये दिल की तड़प कहती है, अब भी आंखों को रहता है इंतजार उनका। वो एक झलक उनकी कोई भूला सा ख्वाब लगती है, थिमट के भी न मिटने की वो शाम, के रह रहे के साहिल से टकराती थी मौजें। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है।
1: तड़प ए दिन रात थी

कदम उनकी जानिब ही बढ़ चली। धीरे धीरे से एहसास से मोहब्बत भी हो चला। शर्मो हया के दामन में रुकती सांसें, कुछ कहना चाहें भी तो कह न पाएं। बात होंठों तक आके रुक गई, फासले दरमियां और वो मुश्किलों का समा। उलझने इधर भी कुछ उधर भी, आंखें झुकी, होठों पे वो हल्का सा तबस्सुम छाया, और दिल ने किया इकरार-ए-वफा।

ये कातिलाना निगाहें आपकी न जाने क्या फरमा गईं, वो बताएं कि ये बेखुदी नहीं तो और क्या है कि अब खुद से ही हम पूछते हैं अपने घर का पता। डर है कि मेरे मुकद्दर की सुहानी ये रात कहीं थम न जाए। ये सांसों की घुटन, ये दिल की तड़प, जरा रुकिए कि ये समा कहीं गुजर न जाए। मैं मिट न जाऊं, तुम मुझे रख लो संभाल कर, बरसों पुरानी कीमती तस्वीर।

दिल की बारियाबी में उनके कदमों की आहट, उनका आना था कि पलकों में सिमटते जाते थे रात के मंजर। ये कौन बताए कि दिल जाने कब से रहता है परेशान तेरे बगैर। सच जी चाहता है कि ये मंजर समेट लूं, तो हुस्न खामोश और इश्क बेपरवाह, जाने कैसी है ये कश्मकश की रात। क्या हो जो मोहब्बत इससे वाबस्ता हो जाए, और किसी प्यास की मानिंद होंठों पे ठहर जाए।

FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719

9 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779810316117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा